सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 और 48 सेकंड होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव

0: है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में, IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। अपना सर्वस्व आराध्य के प्रति समर्पित कर उसमें लीन हो जाना ही सच्ची आराधना है। जहां भक्त और आराध्य के बीच कुछ भी अलग नहीं होता है,

ईश्वर जिस पर खुश होता है उसे नदी की सी दानशीलता, सूर्य की सी उदारता और पृथ्वी की सी सहनशीलता प्रदान करता है।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से आप सुन रहे हैं वंदना कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
4: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें, नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
5: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
4: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
4: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें, नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
5: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
4: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
4: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें, नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
5: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
4: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: जिसने परमात्मा को जान लिया उसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है चिंतन।
1: मानना तो आसान है लेकिन जानना बड़ा मुश्किल है। हम मानते तो हैं कि हम आप सबके भीतर परमात्मा का वास है, हम सबके भीतर प्रभु का निवास है, लेकिन क्या विचार करिए, चिंतन करिए कि प्रभु हमारे भीतर हैं यह हमने स्वीकार किया है। अगर हमने यह स्वीकार किया होता तो हमारे जीवन में कभी हमसे त्रुटियां होती, हम गलत कार्य करते? अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो हम पूर्ण रूप से उस परमात्मा को मान नहीं पा रहे हैं। और पूर्ण रूप से परमात्मा को मानने की विधि है जैसे दूध में घृत है, गन्ने में खाड़ है और आम के वृक्ष में से निकला हुआ आम का फल है। तो दूध में घृत है यह परलक्षित तभी हो सकता है जब दूध को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दूध को दही, दही से मक्खन, मक्खन से तब घी निकलता है। दूध में घी है यह ठीक है, यह हम जान तो रहे हैं, लेकिन घी को निकालने की प्रक्रिया से जब घी अलग हो जाता है तो हम स्वीकार कर लेते हैं यह घी है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है, हम सब जानते हैं कि हमको चलाने वाला, इस सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा ही है, परंतु फिर भी हमारे जीवन में दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, ऐसे ऐसे कार्य करना जो निंदनीय है हम कर रहे हैं, तो हम उस प्रक्रिया में नहीं हैं। अगर हम उस प्रक्रिया में प्रवेश करें, धीरे धीरे ही प्रवेश करें, और प्रक्रिया में प्रवेश करने का सबसे सरल उपाय है कि सर्वत्र परमात्मा विराजमान, ये भाव उदित कैसे होगा, ये भाव आएगा कैसे कि सब जगह प्रभु विराजमान है, तो ये भाव कहीं और से आने वाला नहीं है, यह आपके अंतःकरण की पवित्रता से ही संभव है। और वह भाव आने का प्रक्रिया क्या है, जैसे नवधा भक्ति है, सबका स्वरूप है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शख्य आत्मनिवेदनम। जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, यह दर्पण की भांति हैं और यह निवेदित करते हैं कि तुम्हारा वह भाव कैसे बनेगा। एक प्रक्रिया से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। जिन इंद्रियों को हमने संसार में लगा रखा है, इन्हीं इंद्रियों को जब हम विषय से हटा करके उस शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्ग पर लगाते हैं तो उस प्रक्रिया के हम पथिक हो जाते हैं, उस प्रक्रिया के मार्ग रूपी पथ के पथिक हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमें यह लगने लगता है कि वह दृष्टा, वह परमात्मा, ओम इत्यक्षरम जगत सर्वम मुंडक उपनिषद का मंगलाचरण ही है, वह परमात्मा जो दृष्टा है, सर्वसमर्थमान है, उसे मात्र मान लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन अगर हम जान गए, सूरदास जी महाराज प्रभु को जान गए तो कहते हैं, निबल जान के जात हो बाँह छोड़ा के मोए, हृदय से तुम जानो तब मैं जानो तुम। उस परमात्मा को जब मानने के अलावा मीराबाई ने जाना तो राणा का दिया हुआ विष हंसते हंसते वह पी गई। उस परमात्मा को जब रैदास जी ने जाना तो मन चंगा कठौती में गंगा हो गया। उस परमात्मा को जब देवराव बाबा ने जाना तो महाराज देवराव बाबा को वह सामर्थ्य प्राप्त हो गया कि सबसे बड़े योगी हो गए जिनकी उम्र का पता नहीं। वह भाव जब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी में जगा तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भगवत रसरसिक भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हो गए। वह भाव जब राधा बाबा में जगा तो राधा बाबा इस गोरखपुर को छोड़ करके गए ही नहीं, उस धरा को छोड़ करके गए नहीं, वह भाव जगे। और जब भाव जगता है तो सबसे बड़ी बात कि आप पवित्र होने लगते हैं, आपका भाव, आपकी वाणी, आपका जीवन एक ऐसे आनंद की प्राप्ति होने लगती है जिस आनंद का वर्णन जीवा से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह आनंद महसूस किया जाता है। और परमात्मा को कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। परमात्मा का स्वरूप, ये जितने भी स्वरूपों का हम दर्शन करते हैं एक प्रक्रिया है। वस्तुतः परमात्मा का स्वरूप तो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है। जितनी देर तक आप आनंदित रहते हैं, जितनी देर आप प्रसन्न रहते हैं, समझ लीजिए उतने देर तक परमात्मा से आपके, आपका कनेक्शन है, आप कनेक्ट हैं। आप आनंदित हैं तो कनेक्ट हैं, आप दुखी हैं, आप उनसे दूर हैं, तो मानने से अच्छा है प्रयास करें, थोड़ा बहुत भी अगर जान लें तो हमारा कल्याण हो जाए।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र

से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मानस गान सुनेगा सुबह 6:40 पर। कृष्णकांत का वसीयतनामा दिन में 12 बजे ये नाटक प्रसारित किया जाएगा।

नारी जगत लेकर आएंगी लता चंदोला। इसमें चर्चा होगी गर्मियों के छुट्टियों में खुद को करें रिसाइकिल, करें योग, रहें निरोग, लू से बचाओ, और साथ ही बच्चों को दें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। खेती किसानी का कार्यक्रम होगा दिन में 1:50 पर। बातचीत सुनिएगा पशुओं में थनैली के लक्षण व बचाव, डॉक्टर रमाशंकर सिंह से कृष्णचंद की। युवाणी का समय है 5:05 और बालवाड़ी 5:35 पर। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम में हथकरघा, इस विषय पर जानकारी देंगे बाल कृष्ण मिश्र। News@9 रात्रि 9:00 ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। स्पॉटलाइट का समय है 9:15 और रात्रि 9:30 पर सुनिएगा युवा भारती। रात्रि 10:00 हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसके अंतर्गत पंडित हरि प्रसाद का चौरसिया का बांसुरी वादन होगा राग मालकोस। ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

वन गमन के लिए श्री राम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधु की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहू को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्री राम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: AIR at 90।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से अब से कुछ ही पलों में।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमप्रबन्धने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च संबोधयन् आसीत्।
3: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
2: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः 5 दिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, व्यापारनेतारः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतम स्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 92,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां

0: शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषि मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं चतुःसप्ततिसहस्राधिकैकलक्ष क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीयदिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटंस दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटंस दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम

मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश गान, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार होंगे अब से कुछ ही पलों में।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं,

0: मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ी। कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
3: मऊ जनपद फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है।
4: इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं।
3: कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
2: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गाँव के विकास से ही साकार होगा।
5: गांव स्वावलंबी होंगे तो आप

0: आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाए। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के सामयिक प्रयास है और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गाँव विकसित होंगे।
1: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कल कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने TET को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि TET केवल औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में TET पास करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दिया है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है और रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1011 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार, परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें।
1: इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 2 लाख

0: 70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कोरोस केरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है। प्रदेश में बीते गुरुवार की रात से मौसम में आए परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में जनधन की हानि हुई है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए, जबकि गुरुवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में कई वाहन बह गए। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शाकंभरी देवी मंदिर प्रबंधन ने कल तक मंदिर में दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के बीच बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा एक वर्ष और बढ़ी। कल दो पालियों में आयोजित की जाएगी BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरवा सुहानी। कार्यक्रम का पहला नगमा है कभी कभी फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे काला पत्थर फिल्म से इस गाने को। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की थी।

अभी आप सुन रहे थे नूरी फिल्म का ये गाना। आवाज़ें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की थी। संगीत खयाम का था और इस गीत को लिखा था जान निसार अख्तर ने। कार्यक्रम का अगला नगमा है सिलसिला फिल्म से। संगीत शिवहरि का, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा लेकर आए हैं लम्हे फिल्म से, संगीत शिवहरि का है, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है। कार्यक्रम का आखिरी नगमा है।

0: लता मंगेशकर का इस गीत के साथ ही पूर्वासुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
6: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
5: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
6: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
5: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2 लाख

0: 70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के

0: लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में सिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने सीबीएसई की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रीवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी

0: segment, already hurt by surge in fuel and food prices. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजाराई जारी रहने के पेश नजर एलपीजी के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से मां और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाति जजगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज बिहार में बौद्ध गया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी के जखीरे कम से कम 30 दिन के लिए कायम करें, क्योंकि मगरबी एशिया में महाजाराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने यह बात मगरबी एशिया महाजाराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामनिगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदाम का जिक्र करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरांदोजी की रोकथाम

0: बीएसपी महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आजाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौम तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह यह भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौम तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आज़ादी से लेकर इंसानी तरक्की और म्यारे जिंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफर की अक्कासी करता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता 4 दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमाया किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी जबान को सरकारी जबान का दर्जा मिलने से गोवा के रियासत बनने की राह हमवार हुई और उसी साल 30 मई को गोवा भारत की 25वीं रियासत बन गई। गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का दौरा करेंगे जहां वो तहकीक और टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुमाइशी अशिया का मुशाहिदा करेंगे और साइंसदानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान नायब सदर सीएसआईआर एनआईओ कॉफी टेबल बुक का इजरा भी करेंगे। पणजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गोवा के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जनाब शाह ने कहा कि गोवा सकाफत और विरासत का अजीम शान इम्तजाज है जो दुनिया के सामने गर्मजोशी से भरपूर भारतीय ज़ियाफ़त का चेहरा पेश करता है। जनाब शाह ने कहा कि रियासत गोवा मुल्क की तरक्की और फख्र के मामले में अपना तआवुन जारी रखेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज्यादा मौसर तरीके से निमटने के लिए सरहदी मुहाफिज फोर्स बीएसएफ को इजाफी जिम्मेदारियां देने पर गौर कर रही है। जनाब शाह ने कल गुजरात के भुज में बीएसएफ एहलकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इस दौरान जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद पर स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम 2 नई सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने मजीद कहा कि बीएसएफ के कयाम के 60वें साल के मौके पर सरहदी हिफाजत के बीएसएफ के नजरिए को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला किया गया है। जनाब शाह ने महज सरहदी सलामती के रिवायती नुक्ते नजर को इलाकाई सलामती के नए नुक्ते नजर से बदलने के मकसद से क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड के कयाम को मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और चंडीगढ़ में ज्वालाबारी के साथ आंधी तूफान की पेशगोई भी की है। महकमे ने शुमाल मशरकी रियासतों और साहेली कर्नाटक में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मगरबी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। हांगकांग में जारी 20 साल से कम उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सोने के 4, चांदी और कांसे के 2-2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में भारत चीन के बाद दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। कल मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स ने 4 सोने के तमगे समेत 7 तमगे जीते हैं। 19 साल की पूजा सिंह ने खवातीन की 1.3 मीटर की हाई जंप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा जीता है। भारत के लिए दीगर 3 सोने के तमगे नितिन गुप्ता, अमानत कंबोज और राहुल जाखड़ ने हासिल किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सेकेंड क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अब कल अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की जानिब से जीत के लिए मुकर्रर 215 रन के निशाने को गुजरात टाइटंस ने 8 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 104 रन बनाए, जिन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए थे।

0: वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 96 रन बनाए, अलबत्ता वो एक बार फिर सेंचुरी बनाने से चूक गए। खवातीन क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में दूसरे टी20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच में भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जुमेरात के रोज चैम्सफोर्ड में खेले गए इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त देने के बाद भारत ने सरदस्त सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शासुर्खी बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर वाकई चौकी पर जवानों से बातचीत की और 14 निगरानी चौकियों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरहदी इलाकों के लिए 4 रुखी सिक्योरिटी ग्रिड बनेगी। इस खबर को रोजाना प्रताप ने जड़ी सुर्खी के साथ शाया किया है। रोजाना प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजर्बात पर मबनी किताब के रस्म इजरा की खबर को पहले सफे पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मईशत बनकर उभरा। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में यह बात कही गई। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजामा इंकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान को बड़ी अहमियत दी है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुतअद्दिद निकात पर इत्तेफाक राय में पेशरफ्त हुई है। नीज आबनाए हुरमुज में बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल बहाली यकीनी बनाई जाएगी। आज के बेशतर अखबारात ने उर्दू के नाम और शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद के इंतकाल पर उर्दू दुनिया और उनके मद्दाहों की तरफ से जबरदस्त खराज अकीदत पेश किए जाने और ताजियती नशिस्तों के अहतमाम की खबर पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजराई जारी रहने के पेश नज़र LPG के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें।

बोध गया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के दो तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ

0: मीडियम वेव 366
1: 3.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

माय नेम इज़ खान। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना। आवाज़ें शफकत अमानत अली और साथियों की थीं। संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय और गीतकार निरंजन अय्यर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं कल हो ना हो फिल्म से।

आवाजें अलका याग्निक और शान की हैं। संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय। शब्द रचना जावेद अख्तर की है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से होगा।

0: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम
1: बुजुर्गों को सम्मान की एक नई मिसाल पेश की। ट्रेजरी कार्यालय के निकट नवनिर्मित पेंशनर कक्ष का उद्घाटन जिलाधिकारी ने जनपद की सबसे बुजुर्ग पेंशनर 95 वर्षीय दुलारी देवी से फीता करवाकर कराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने दुलारी देवी को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कक्ष के बनने से अब पेंशनर को कलेक्ट्रेट आने पर बैठने और आराम करने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी, वरिष्ठ कोषाधिकारी त्रिभुवन लाल और पेंशनर संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव सहित कई सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन की संवेदनशीलता की सभी पेंशनर ने सराहना की है। संत कबीर नगर जनपद की प्रभारी मंत्री और प्रदेश की राज्य मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने बीते दिनों खैलाबाद स्थित डाक बंगले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में महिलाओं के अधिकार संबंधी बिल पेश किए जाने के दौरान राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह की टिप्पणी की और मजाक उड़ाया वह देश की आधी आबादी के लिए एक काला दिन था। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने महिलाओं के अधिकारों को संसद में छीनने का प्रयास किया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और देश की महिलाएं जन आक्रोश के साथ वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर इस गठबंधन को खदेड़ने का काम करेंगी। संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने तहसील खैलाबाद के ग्राम पंचायत पटखौली में रवि वर्ष 2025-26 के तहत गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सीसी ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में संपन्न हुआ। डीएम की मौजूदगी में चयनित किसान शैलेश कुमार के गाटा के दायरे में फसल की कटाई कराई गई, जिसमें कुल 19.700 किलोग्राम प्लाट उपज प्राप्त हुई। इस आधार पर क्षेत्र में गेहूं की औसत पैदावार 45.50 कुंतल प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई। संत कबीर नगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को 1600 का लक्ष्य मिला है, जिसे बैंकों को भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स और जिला समन्वयकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों को निपटारा 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लीड बैंक मैनेजर पवन कुमार को उद्योग विभाग की योजनाओं का लगातार फॉलोअप करने के निर्देश दिए गए। संत कबीर नगर जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक की। वर्ष 2026-27 के लिए जिले को मिले 1600 के लक्ष्य को बैंकों को भेजते हुए डीएम ने लंबित ऋण आवेदनों को 1 सप्ताह में निपटाने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले अग्रणी जिला प्रबंधक पवन कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रसाद और युवा उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर संदीप कुमार मीना द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स परिसर में निर्माणाधीन आधुनिक जिम एवं गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का ही उपयोग किया जाए और मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पुलिसकर्मियों को जल्द ही इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने

0: जिम में आधुनिक फिटनेस उपकरण उपलब्ध कराने का, गेस्ट हाउस में बेहतर वेंटिलेशन, स्वच्छता और भविष्य के लिए रख रखाव आदि को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। संत कबीर नगर जनपद में कानून व्यवस्था और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जेल परिसर के भीतर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा और जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बैरक, मेस और पूरे जेल परिसर की सघन चेकिंग की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने कैदियों से सीधे वार्ता कर उनकी समस्याओं और मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर मौजूद सभी कारागार कर्मियों को सख्त हिदायत दी कि जेल के अंदर किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रतिबंधित सामग्री नहीं जानी चाहिए और सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता व सही तरीके से करें। साथ ही जेल परिसर की साफ सफाई को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। औचक निरीक्षण के बाद जिला कारागार में कैदियों के हुनर और सुधार की दिशा में एक नया कदम बढ़ाते हुए नवनिर्मित बेकरी का फीता काटकर भव्य उद्घाटन भी किया गया। इस पूरे निरीक्षण उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के PRO PK गुप्ता सहित अन्य जेल अधिकारी और भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
1: संत कबीर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
2: झांसी में मई के महीने में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने पर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूल और खेल अकादमी के समय में बदलाव किया गया। खुले मैदान में दोपहर के समय खेल गतिविधियों पर रोक लगाई गई तथा बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। नगर निगम द्वारा प्रमुख चौराहों पर प्याऊ शीतल जल केंद्र और छायादार शेड लगाए गए। प्रदेश के कई शहरों की तरह झांसी में भी गर्मी से राहत के लिए सार्वजनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उधर स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए विशेष हेल्पलाइन और चिकित्सा व्यवस्था सक्रिय रखी। जिला अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर झांसी को औद्योगिक और ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने की योजनाओं को गति मिली। झांसी सोलर पार्क परियोजना तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर कार्य आगे बढ़ा। शासन स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहा। झांसी मंडल में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास भी जारी रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण, ग्रामीण संपर्क मार्गों की मरम्मत तथा शहर के यातायात प्रबंधन को लेकर कई योजनाओं पर काम तेज हुआ। शहर में ट्रैफिक सुधार और अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान को और गति दी गई। वार्ड स्तर पर सफाई निरीक्षण किए गए तथा खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही हुई। शहर के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की निगरानी बढ़ाई। कई गांवों में टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की गई। खराब हैंडपंपों की मरम्मत तथा पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया गया। शिक्षा विभाग की बात करें तो ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले विद्यालयों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन अभियान को गति दी गई ताकि इस नए शैक्षिक सत्र में अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके। कृषि क्षेत्र में किसानों को गर्मी और सूखे की स्थिति से बचाने के लिए कृषि विभाग ने सलाह जारी की। किसानों को कम से कम पानी वाली फसलें, सिंचाई प्रबंधन और पशुओं की सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिले में जल संरक्षण और तालाब पुनर्जीवन अभियान को लेकर प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया। मनरेगा के अंतर्गत तालाबों की सफाई और ग्रामीण जल संरचनाओं के संरक्षण का कार्य जारी रहा। महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय रहा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों और कॉलेजों में महिला हेल्पलाइन और साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए साइबर सेल द्वारा लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने की सलाह दी गई। पुलिस ने कई मामलों में कार्रवाई करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। धार्मिक और सामाजिक आयोजन को लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट रहा। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोशल मीडिया से जुड़े मामलों में पुलिस कार्रवाई भी चर्चा में रही। खेल गतिविधियों की बात करें तो झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में क्रिकेट, हॉकी और एथलीट प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी रहा। भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह के समय अभ्यास

0: कराने की व्यवस्था की गई। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई और प्लेटफॉर्म प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए स्टेशन परिसर में सुविधाएं बढ़ाई गयी। स्वास्थ्य विभाग ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग और साफ सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें संवेदनशील इलाकों की का निरीक्षण कर रही हैं। युवा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार की निवेश और विकास योजनाओं के तहत बुंदेलखंड को विशेष प्राथमिकता देने की बात दोहराई गई। सड़क, ऊर्जा, सिंचाई और औद्योगिक परियोजना को गति देने पर जोर दिया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च भी किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी गई। गर्मी और जल संकट के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई अभियान चलाए गए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे संत कबीर नगर और झांसी जिलों की हलचल। मीडियम वेव
3: 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं समूह स्वर में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से होगा।
1: तो आज के मेहमान हैं आतिया बी और समनुदेशिती है सैयद मोहम्मद उमेर की। आइए सुनते हैं।
2: आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, उर्दू अदब में अफसाना निगारी एक अहम और मकबूल तरीन सिंफ अदब है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। उर्दू अफसाना अपने आगाज से ही इंसानी जिंदगी के जज्बात, मसाइल, समाजी तगयुरात और तहजीबी अकदार का आईना रहा है, लेकिन वक्त के बदलते तकाजों के साथ साथ अफसाना निगारी में भी नए रुझानात, नई फिक्र और नई असालीब ने जन्म लिया जिसे हम जदीद अफसाना निगारी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जदीद उर्दू अफसाना सिर्फ वाकयात के बयान तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसने इंसान के बातिन, नफ्सियाती कशमकश, तन्हाई, बेचैनी, माशरती इंतिशार और बदलती हुई कदरों को बड़ी गहराई के साथ पेश किया। तरक्की पसंद तहरीक के बाद जदीदियत ने अफसाने को एक नई सिमत अदा की जहां अलामत, तजरीद, दाखली एहसासात और फिक्री पेचीदगियों को खास अहमियत हासिल रही। वहीं जदीद अफसाना निगारों ने रिवायती किस्सा पन से हटकर इंसानी शोर की तहों को दरियाफ्त करने की कोशिश की। यही वजह है कि जदीद अफसाना महज तफरी नहीं बल्कि फिक्र एहसास की एक संजीदा अदबी सूरत बनकर सामने आया। इसमें शहरी जिंदगी के मसाइल, मशीनी दौर की उलझने, रिश्तों की टूट फूट और इंसान की दाखली तन्हाई को बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया गया है। लिहाजा आज के इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जदीद उर्दू अफसाना किन फिक्री और फनी बुनियादों पर कायम दायम है, इसने रिवायात से हटकर किस हद तक इन्हिराफ किया है और मौजूदा दौर में इसकी अदबी समाजी अहमियत क्या है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जदीद अफसाना कारी के जहन व शुऊर पर किस तरह असर अंदाज होता है और उर्दू अदब की तरक्की में इसका क्या किरदार रहा है। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने अहतमाम किया है एक बातचीत का। मौजू है उर्दू अदब में जदीद अफसाना निगारी। इस उन्वान पर बातचीत करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ फरमा है मोहतरमा अतिया बी साहिबा और नाचीज सैयद मोहम्मद उमेर। हम सबसे पहले अपने खुसूसी मेहमान का आज के उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बगैर किसी तमहीद ताखीर अतिया बी साहिबा से सवाल है कि अतिया बी साहिबा, चूंकि आप गुज़िश्ता कई बरसों से अफसाना निगारी की हैसियत से अफसाना निगारी

0: रही हैं, तो आपके नज़दीक जदीद अफसाने निगारी से क्या मुराद है और इसकी क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं, हमारे सामीन के लिए इसकी वजाहत फरमाएं।
1: बहुत शुक्रिया उमेर साहब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान हमेशा से तफरी का सामान मुहैया करने के लिए कोशा रहता है, और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से ये दौर चलता चला आया। कभी इस किस्से कहानी ने, जिसको हम आज अफसाने का नाम देते हैं, उस किस्से ने कभी दास्तान का नाम लिया, फिर उसका एक रुख बदला, फिर वो नॉवल की शक्ल में आया, और बदलते हुए सामाजिक कैफियात ने उसको हमारे सामने अफसाना और जदीद अफसाना और अफसांचे का शक्ल दे करके हमारे सामने पेश किया है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जदीद अफसाना एक नई जहत है। अफसाना, चूंकि आपने बताया कि जैसे बात हुई कि एक इंसानी हम आहंगी या समाजी बेदारी या इंसानी कैफियत का नाम है, इंसान के जो फीलिंग्स हैं, जो इंसान के एहसासात हैं, उनको वो किस तरह से पेश करता है, ये अफसाने में हमें देखने को मिलता है। इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत अगर हम कहें तो तरक्की पसंद तहरीक से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1936 के बाद जदीद अफसाने का एक रुझान हमें देखने को मिलता है, लेकिन बाज़ाब्ता नहीं मिलता। बाज़ाब्ता हमें ये रुझान 1950 के बाद देखने को मिलता है। 1936 के बाद प्रेमचंद के यहाँ अफसाने के बहुत ही अहम पहलुओं पर या और दीगर अफसाना निगारों के यहाँ ये पहलुओं पर गुफ्तगू देखने को मिलती है, तो लेकिन इनका बाज़ाब्ता तौर से जो हम बुनियाद कहेंगे या अफसाने का एक बदलता पहलू कहेंगे, बदलता जाविया कहेंगे, वो हमें तकरीबन 1950 के बाद देखने को मिलता है। इसमें बहुत से अफसाना जो कि कहा जाए कि मुख्तसर कहानी, किस्सा या छोटी बात, हम अफसाना कहते हैं।
0: जी, तो बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि जदीद उर्दू अफसाना निगारी से मुराद ये है कि ऐसा अफसाना जिसके अंदर जदीद दौर के मसाइल, इंसानी नफसियात और समाजी तब्दीलियों को पेश किया जाए, मगर वो मुख्तसर जरूर हो। बहुत अच्छा आपने कहा, और इसकी खसूसियत पर भी आपने इशारा करते हुए कहा कि यह हकीकत निगारी, अलामत निगारी और फिक्री गहराई का पेश खेमा होता है। बहुत ही अच्छी बात आप कर रही हैं अफसाने के ताल्लुक से। तो यहाँ ये सवाल बनता है आपसे कि रिवायती और जदीद अफसाना में क्या नुमाया फर्क है, और इन नुमाया फर्कों में किन पहलुओं पर आप ज्यादा नजर रखे हुए हैं, की वजाहत हमारे सामने के सामने फरमाएं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। रिवायती अफसाना और जदीद अफसाना, ये दो पहलू हैं अफसाने के। और रिवायती अफसानों में बयान, इश्क, इस्लाह या माशरे के बदलते हुए पहलू या सादा समाजी मसाइल, सादा बयानी का जिक्र हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। जबकि जदीद अफसाने में मौजूआत या असलूब जो है, किरदार निगारी है, फिक्र के एतबार से फनी राहें अख्तियार कर लेती है, या नए नए जाविये, नए नए रुझानात हम इसमें देखते हैं। एक बात ज्यादा तरीके से कह देते हैं जो हमारे क्या प्रेमचंद क्या देखने को मिला, या इस तरह से बहुत से हमारे अफसानों निगारों क्या देखने को मिला, लेकिन उसी बात को हम इशारे किनाइयों में, तंज मिजाह में, या समाज के उन पहलुओं पर जिन पे हम जानते हैं, समझते हैं कि इनमें तब्दीली आने की बहुत जरूरत है, उसमें हम अलामती अनासर पेश करते हैं। अलामती अनासर को पेश करते हुए हम जदीद अफसाना निगारी को बुनियाद रखते हैं।
0: बहुत अच्छा कहा आपने कि रिवायती अफसाना सादा किस्सा और इस्लाही अंदाज पर मबनी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जबकि जदीद अफसाना इंसानी बातिन, नफसियाती कैफियत और अलामती उसलूब पर ज्यादा तवज्जो देता है। बहुत अच्छा आपने बताया। यहाँ पर आपने जदीदियत का जिक्र किया, तो एक सवाल यहाँ पर यह है कि जदीद अफसाना निगारों ने शहरी जिंदगी के मसाइल और समाजी तब्दीलियों को किस तरह अपने अफसाने

0: रोजी रोजगार की तलाश में आकर के शहरी जिंदगी की उथल पुथल में कहीं गुम सा हो जाता है। उस जिंदगी की कश्मकश को एक अफसाना निगार बखूबी तरीके से बयान कर सकता है। वो जानता है कि क्या क्या अनासिर उसमें हो सकते हैं, जिसमें बहुत से उनवानात पे एक अफसाना निगार बात करता है। शहरी दुनिया कैसी है, उसकी रंगारंगी कैसी है, मसरूफियात जिंदगी, तन्हाई, बेबसी, रोजगार की तलाश, रिश्तों की कमजोरी, अखलाक की जवाल, शहर में बढ़ती हुई हंगामा खेज हरकतें, गरीबी, ये तमाम मौजूआत शहरी जिंदगी के नशेब फराज में बहुत ही मबनी है। जिलानी बानो ने इस पे अफसाना भी कहा है, कई अफसाने लिखे, एक का हवाला देना चाहेंगे। ये शहर बिकाऊ है, ये एक उनका अफसांचा है, जिसमें उन्होंने शहर के नशेब फराज, यहाँ की बेरंगा रंगी, जो दूर से देखने पे बहुत ज्यादा रंगों से भरा हुआ नजर आता है, अगर उस शहर में आप अंदर दाखिल हों और उसके अंधेरों को देखें तो इंसान कहीं ना कहीं गुम होकर के रह जाता है। इसमें सियासत, समाजी और उनके जो हालात हैं उन पे तंज व फिक्र का नजरिया जिलानी बालो ने अपने अफसाने में पेश किया है।
1: बहुत उम्दा आपने बताया कि जदीद अफसाने निगारों ने शहरी जिंदगी की मसरूफियत, तन्हाई, बेरोजगारी और बदलते हुए रिश्तों को अपने अफसानों में नुमाया अंदाज में पेश किया है, और खास तौर पर आपने जिलानी साहिबा का तذکرہ करते हुए उनके अफसाने को यहाँ पर मेंशन भी किया है। बहुत खूब। यहाँ पर एक सवाल और करेंगे, जब आपने अभी जिलानी साहिबा का तذکرہ किया है तो एक और सवाल यहाँ पर है कि जदीद अफसाना निगारी में औरत के किरदार और उसके मसाइल को किस अंदाज में पेश किया गया है, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: बहुत अहम सवाल है। औरत का किरदार, औरत का किरदार हमेशा से मौजूए गुफ्तगू रहा, लेकिन उसके नज़रिए बदलते गए। हम देखते हैं अफसाना जब वो इब्तदाई दौर में था, तब भी औरत का किरदार बड़ा बेबस, लाचार, मजबूर, दब्बा कुचला नज़र आता था, लेकिन जदीद अफसाने में काफ़ी चीज़ें बदलती हुई नज़र आईं। इसमें औरत आज भी कितना भी तरक्की पसंद क्यों ना हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं एक खौफ, नफ्सियाती कैफियत, जहनी तन्हाई, समाजी पाबंदी, कश्मकश और दीगर समाजी मसाइल में गिरफ्तार नजर आती है। हकीकत यही है कि वो सिर्फ कहीं ना कहीं कैद होके रह गई है। वो चाहे कितनी भी आज़ाद हो जाए, समाना कितना भी बदल जाए, लोग उसे कितना भी कहने लगे कि हाँ अब औरत इंडिपेंडेंट हो गई है, लेकिन आज भी उसको कहीं ना कहीं समाज में दबा कुचला ही समझा जाता है। जिलानी बानो ने, मैं फिर से एक रेफरेंस देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने कई अफसानों में, जैसे मोम की मरियम और एक अफसाना उनका है प्रॉमिस, जिसमें वो अपने बेटों से एक प्रॉमिस लेती हैं, एक वादा लेती हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है, क्योंकि वो तन्हा रहती हैं, उनके शौहर नहीं रहते प्रॉमिस अफसाने में, और वो ये वादा लेती हैं कि तुम लोग बाहर रहते हो और जब कभी भी मुझे कुछ होता है तो तुम लोग मेरे पास आओगे और मेरे आखिरी रसूमात करोगे। लेकिन वो बेटे, उनकी तबीयत और अलालत, क्योंकि उनको कैंसर जैसी मुझे बीमारी हो जाती है और उस अलालत में वो ये सोचते हैं कि अब वालदा का आखिरी वक्त है और उनसे प्रॉमिस किया था और हमें जाना चाहिए, इस नुक्ते नजर को देखते हुए आ तो जाते हैं, लेकिन उनके इंतकाल खुदा ना खास्ता होता नहीं है और वो वापस चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो इस दुनिया से कूच कर जाती हैं और वो प्रॉमिस टूट जाता है। तो बेटों की इतनी मसरूफियत कि वो अपनी माँ के आखिरी वक्त में भी उनके साथ ना रह सके। इस तरह से बहुत से अफसाने रहे, और आप तो जानते हैं इस्मत चुगताई ने बहुत से औरतों के ऊपर लिखे, टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई का बहुत अच्छा नामी गिरामी अफसाना है, या कुरतुल ऐन हैदर ने लिखे, रजिया सज्जाद ज़हीर ने लिखे, इस तरह से मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने बड़े अहम अफसाने लिखे हैं, फ्रिज में औरत या बेटी, ये मुशर्रफ आलम ज़ौकी के बहुत ही अहम तरीन अफसानों के नाम हैं।
1: बहुत अच्छा कहा कि जदीद अफसाना निगारी में औरत को एक बाशऊर, खुद मुख्तार शख्सियत के तौर पर पेश किया गया है और इसके समाजी घरेलू मसाइल को हकीकत का रूप देकर पेश किया गया है, बयान किया गया है, जिसमें बहुत से अफसाना निगार आपने जिनके नाम लिए काबिले जिक्र हैं। एक सवाल और यहाँ पर करेंगे, आपने शुरू में कौमी यकजहती का हवाला दिया था, कौमी यकजहती के ताल्लुक से करेंगे कि जदीद अफसाना निगारी में कौमी यकजहती और समाजी हम आहंगी के अनासिर किस हद तक मौजूद हैं, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: जी हाँ, जदीद अफसाना निगारी में कौमी यकजहती का रंग आपको जा बजा देखने को मिलता है,
1: जी
0: और काफ़ी अफसाने लिखे गए, काफ़ी पहलुओं पे अफसाने लिखे गए, और आज से नहीं, मेरे ख्याल से मंटो ने भी लिखे हैं इस पे,

0: पर सजिया सज्जा जहीर ने भी लिखे हैं। सभी को पता है कि टॉबर टेक्सिंग बहुत ही मशहूर अफसाना एक रहा मंटो का, और जिसमें उन्होंने एक ऐसा इंसान जो कि पागलपन के उरूज पर पहुंच चुका था और पाकिस्तान की जेल में था टॉबर टेक्सिंग, और क्योंकि वो नाम उसका टॉबर टेक्सिंग नहीं था लेकिन वो टॉबर टेक्सिंग जगह का रहने वाला था, और उसको और उसको इतनी ज्यादा उनसियत उस जगह से थी कि वो पागल होने के बावजूद भी अपनी जमीन से इतनी बेपनाह मोहब्बत करता था कि वो हर पागलखाने में आने जाने वाले जो उससे मिलने आता था उससे यही पूछता था कि टॉबर टेक्सिंग कहाँ है। और उसका नाम जो था वो बिशन सिंह था, लेकिन उसको लोग जानते टॉबर टेक्सिंग के नाम से ही थे। और आखिर में भी यही होता है कि जब लोगों को ये फैसला आता है कि हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम पागल हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे और पाकिस्तान के हिंदू पागल हिंदुस्तान लाए जाएंगे, बंटवारे हो चुका होता है, उस वक्त टॉबर टेक्सिंग को जब लाया जाता है तो वो सरहद पे खड़े होकर सिर्फ यही बात कहता है कि टॉबर टेक्सिंग कहाँ है। और जब उसे पता चलता है कि वो पाकिस्तान में है तो वो जाने को हरगिज तैयार नहीं होता। उसे ये मतलब नहीं है कि वो किस जमीन पर है, सिर्फ जमीन पर लकीर खींचने से बंटवारे नहीं होते, कौमी एकजहती का रंग वहीं पर वो खत्म हो जाता है और आधा हिस्सा उसका पाकिस्तान और आधा हिंदुस्तान में रह जाता है। इसी तरीके के बहुत से अफसाने हैं।
1: बहुत अच्छा कह रहे हैं कि जदीद अफसाना निगारी में कौमी यकजहती, भाईचारा और समाजी हम आहंगी के अनासिर नुमाया तौर पर मौजूद हैं और हमें मिलते हैं, जो मुआशरे को मुस्बत पैगाम देते हैं, और इससे अफसाना निगारी ने बहुत अहम तरक्की भी की है। एक और सवाल यहाँ पर करेंगे, आपने बहुत सारे अभी अफसाना निगारों के नाम लिए, तो अहदे हाजिर में जदीद अफसाना निगार कारी या सामे के लिए महज तफरी फराहम कर रहे हैं।

0: और मोहसिन खान साहब हैं और तमामों दीगर ऐसे अफसाना निगार हैं जो आज भी सिर्फ तफरी का सामान नहीं फराहम कर रहे हैं, वो उनके इस्लाह का काम बराबर चल रहा है और वो अपने अफसानों के जरिए उनके में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, ख्वाह वो डिजिटली तौर से हो, ख्वाह वो किताबी शक्ल में हो, किसी भी तरीके से हो। अफसाने का मकसद ही यही होता है कि समाज को इस्लाह के दायरे से बाहर नहीं रखना है, इस्लाह दर इस्लाह करते जाना। तो अफसाना निगार जितने भी हैं, चाहे कोई भी हो, वो हर वक्त इस्लाह के लिए ही अफसान गए, सिर्फ तफरी का कोई जरिए, क्योंकि तफरी के जरिए में उन पहलुओं को नहीं उजागर किया जाता है जो कहीं समाज में दब के रह गए, जिन पे लोग कभी गौर नहीं करते या लोग उन पे रोशनी डालने का कोई, अरे ये तो बहुत बोरिंग पहलू है, तो बोरिंग नहीं है, वो एक नजरिया है जिस नजरिए को उजागर करना है एक अफसाना निगार का बहुत अहम फरीजा है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जदीद अफसाना निगार सिर्फ तफरी फराहम नहीं करते, यह आपने बिल्कुल वाज़े किया, बल्कि कारी और सामे को जिंदगी और माशरे के मसाइल पर गौर व फिक्र की दावत देते हैं। यहाँ अभी आपने सोशल मीडिया का तस्करा किया और इसी तरह डिजिटल का भी तस्करा किया, एक सवाल इसका लेंगे कि मौजूदा डिजिटल दौर और सोशल मीडिया ने जदीद उर्दू अफसाना निगारी को किस तरह मुतासिर किया है, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: जैसे भी हमने पहले भी कहा आपसे कि सोशल मीडिया क्योंकि लाइफस्टाइल को बहुत मुतासिर करता है, आज का दौर ही डिजिटल युग है, डिजिटल दौर में आज हम जिंदा हैं, हर काम हमारा इवन की फोन से लेकर के टेप रिकॉर्डर हो, डिजिटली कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, हम उस पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत मुतासिर करता है अफसाने को, इसमें बहुत सारे पहलू आ जाते हैं, इसमें अफसाने की इशात बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी फौरन फौरन इशात हो जाती है, जबकि पहले बहुत वक्त लगता था अफसाने की इशात के लिए। सोशल मीडिया के दौर में इसकी बहुत ही आसानी हो गई, मुख्तसर अफसानों की तरफ रुझान लोगों का बढ़ा है, क्योंकि अब वक्त कम होता है लोगों के पास, तो मुख्तसर तरीके से वो सिर्फ स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे सोशल मीडिया पर और उन पे काम करते हैं।
1: जी, तो बहुत अच्छा कहना है आप कि सोशल मीडिया और डिजिटल दौर ने जदीद अफसाना निगारी को ज्यादा का मुस्तकबिल आप कैसा देखती हैं, और आज हमारे सामईन को आप इस प्रोग्राम के तहत क्या पैगाम देना चाहेंगी, इसकी वजाहत फरमाएं।
0: देखिए, जदीद अफसाना निगारी का जो मुस्तकबिल है बहुत रोशन है, ऐसा नहीं है कि अफसाना निगारी का कहीं से जवाल आ रहा है, लिखने वालों की भी कमी नहीं है, बस गौर व फिक्र करने की बारी हो। वो काफी सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे रेख्ता है, उर्दू वेब पेज है, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी हो सकता है, या किताबें हो सकती हैं, उनसे अफसानों का मुताला करें, मुताले की आदत को मत छोड़े, क्योंकि मुताले इंसान को आगे बढ़ाता है और आपका मुताले ही लिखने वालों का हौसला भी बढ़ाता।
1: बिल्कुल सही कहा कि जदीद अफसाना निगारी का मुस्तकबिल रोशन है, बहुत वाजे कर दिया आपने और पैगाम बहुत उम्दा दिया आपने कि नौजवान नस्ल मुताले से जुड़े, मुताले को फरोग दे, ताकि उर्दू अदब से वाबस्तगी उनकी बनी रहे और अफसाना निगारी इसी तरह तरक्की करता रहे। सामीन, आज की इस संजीदा और बामकसद बातचीत से ये हकीकत वाजे होकर सामने आती है कि जदीद उर्दू अफसाना निगारी ने अदब को नए मौजूआत, नई टेक्निक और जदीद उसलूब से मालामाल किया है। इसने इंसानी जिंदगी के बातिनी पहलुओं और असरी मसाइल को बहुत ही संजीदगी के साथ पेश करके उर्दू अदब को आलमी अदबी रुझानात की हम कदम बना दिया है। जदीद अफसाना आज भी उर्दू अदब की एक जिंदा, मुतहर्रिक और मुअस्सिर सिम के तौर पर अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जदीद उर्दू अफसाना निगारी न सिर्फ अपने अहद की तर्जुमानी है, बल्कि आने वाले जमानों के लिए भी फिक्री और अदबी रहनुमाई फराहम करती है। अदब के संजीदा कारीन और नौजवान कलमकारों के लिए ये एक ऐसी अदबी रिवायत है जो मुसलसल इर्तिका के सफर पर गामजन है, चल रही है। और अब हम अपने खुसूसी मेहमान मोहतरमा अतिया बी साहिबा के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आपने हमारे सामईन के लिए बहुत ही उम्दा और अच्छी मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाजत। आदाब।

हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

0: कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
4: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
5: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
4: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: Akashvani at 90.
1: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
2: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
3: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
2: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
6: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: शामिल होगा। राष्ट्रपति के रूप में ओ मिन आउ लाइन की यह पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव वसीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस कोरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नए नेता के चुने जाने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। ओडिशा में आज मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी। और खेलों में हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल उसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज
3: 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते।

संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय, आवाजें एलिसा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली की हैं। शब्द रचना गुलजार की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

अभी आप सुन रहे थे परवरिश फिल्म से इस गाने को। आवाज़ें थीं आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार की। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी।

सुन रहे हैं प्रेम ग्रंथ फिल्म का ये गाना। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
7: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने कहाँ से?
7: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
6: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: सर 2 लाख
8: क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
6: अरे
5: काट दिया।
8: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
5: फ्रॉड?
8: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे।
9: RBI कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे हैं पुकार फिल्म का गाना। सोनू निगम अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं। संगीत दिया है एआर रहमान ने। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी और जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के

0: बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders.
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: This is official visit.
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा है कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोम कैरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये अत्यंत सम्मान की बात है। हांगकांग में एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिहार ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश तेलंगाना में लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं जय नारायण शर्मा और उनके साथी।

0: कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवाते हैं एक लोक भजन।
1: दूल्हा रूप रघुबर के देख के सखियां सब

0: ये लोक भजन आप सुन रहे थे जय नारायण शर्मा और उनके साथियों की आवाजों में। श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
6: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
7: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
5: नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
6: RHL गोल्ड टीम टीसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है।

0: सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी। शास्त्रीय संगीत।
1: श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राकेश उपाध्याय को।

श्रोताओं, इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं भूमि फिल्म से। इस गीत को लिखा है प्रिया सरैया ने, धुन बनाई है सचिन जिगर ने, आवाज़ है राहत फतेह अली खां की।

0: श्रोताओं, गीतांजलि कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं छिछोरे फिल्म से। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन बनाई है प्रीतम ने और सुरों में पिरोया है तुषार जोशी ने।

तुषार जोशी की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे छिछोरे फिल्म से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज़ में। फिल्म का नाम MS धोनी।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं थप्पड़ फिल्म से। इस गीत को सुरों में पिरोया है राघव चैतन्य ने।

थप्पड़ फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे राघव चैतन्य की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम नाटक। आज की हमारी प्रस्तुति का शीर्षक है कृष्णकांत का वसीयतनामा, जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।

0: दवा से कोई असर नहीं होगा वैद्यराज, अब कोई असर नहीं होगा। तुम लोग हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, ताकि हरि नाम के बीच मेरा प्राण सरलता से निकल सके। हरे राम, हरे राम।
1: कौन कौन है?
2: मैं हूं मालिक, ब्रह्मानंद।
1: अच्छा ब्रह्मानंद, अरे आओ भाई, आओ आओ।
2: हुकुम मालिक?
1: हुकुम नहीं, देखो उधर डेस्क में कागज कलम सब रखा है, निकाल लो।
2: बोलिए मालिक, किसको कितना लिखना है?
1: देखो ये बात हमारे और तुम्हारे बीच रही ना।
2: आपकी कसम मालिक, ऐसा ही होगा।

0: देखो, बड़े लड़के हरलाल और छोटे विनोदलाल को तीन तीन आना, बिटिया शैलवती को और गृहस्वामिनी को एक एक आना।
1: तीन तीन छः और दो आठ, एक एक दो तीन पाँच, तीन आठ, बाकी आठ आना किसके नाम रहेगा मालिक?
0: बाकी आठ आने हिस्से का भागी होगा मेरा भतीजा
1: जी जी
0: गोविंदलाल।
1: जी मगर जमींदारी तो आपकी बनाई हुई है, और गोविंद बाबू?
0: गोविंदलाल मेरे छोटे भाई की इकलौती निशानी है, और फिर मैं भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। मेरा नाम है कृष्णकांत। बोलो कहाँ दस्तखत करना है।
1: यहाँ
0: ठीक, यही उचित था। अपने पिता का हिस्सा गोविंदलाल को मिलना ही चाहिए।
2: पिताजी, गोविंदलाल को किस बात का हिस्सा? हम लोग की संपत्ति लेने वाला वो कौन है?
0: हरलाल,
2: माँ और शैलवती का सारा भार हम लोग उठाएंगे, फिर उन दोनों को एक एक आना किस लिए? उन दोनों को तो केवल भोजन और वस्त्र का हकदार होना चाहिए था। आप यही सब लिख जाइए पिताजी।
0: हरलाल, अगर आज तुम बच्चे होते तो तुम्हें गुरुजी से बेत लगवाता।
2: बेत लगाने वाले गुरुजी की मैंने एक बार मूछ भी जला दी थी, ठीक उसी प्रकार मैं इस वसीयत नामे को जला दूंगा पिताजी।
1: ये क्या
2: मैं जला
1: मालिक,
2: दूंगा, जला दूंगा।
1: ये क्या मालिक, वसीयतनामा फाड़ डाला?
0: नया वसीयतनामा लिखो ब्रह्मानंद। गोविंद लाल आठ आना, विनोद लाल पांच आना, मालकिन और शैलवती एक एक आना, अब बाकी हरलाल को केवल एक आना।
2: ठीक है, तो फिर मेरे हिस्से का एक आना भी गोविंद लाल को दे दीजिए, मुझे नहीं लेना है भीख का टुकड़ा।
0: हरलाल,
2: चीखिए मत पिताजी, आज ही आपका गांव छोड़कर शहर चला जाऊंगा। शहर के पंडितों का कहना है विधवा विवाह शास्त्र सम्मत है, बस वहीं किसी विधवा से ब्याह रचा करके गृहस्थी बसा लूंगा।
0: क्या कहा, तुम विधवा विवाह करोगे?
2: शास्त्र सम्मत बातों का मैं अनादर कैसे कर सकता हूं पिताजी? शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलना हमारा धर्म है।
0: लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है?
2: वैसे ही पिताजी जैसे मेरे हिस्से का सिर्फ एक आना हो सकता है। आप घबराइए नहीं, मैं विवाह करने के बाद कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगा पिताजी।
0: तू समझता क्यों नहीं बेटा, विधवा से ब्याह करके मेरी मूछ नीची क्यों करवाना चाहता है? मैं मानता हूं विधवा के साथ विवाह करना अच्छी चीज है, इसे बढ़ावा मिलना ही चाहिए, पर क्या किया जाए, समाज हमें ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं देगा। और जरा ये भी तो सोच कि फिर तेरी बहन शैलवती का डोला क्या कभी उठ सकेगा?
2: तो फिर वसीयतनामे में मुझे आठ आना लिख दीजिए, मैं विधवा विवाह का इरादा छोड़ दूंगा।
0: ये कभी नहीं होगा, तू शौक से विधवा विवाह कर ले, जी चाहे तो उसे भी यहीं ले आ, पर याद रख कृष्णकांत का वसीयतनामा शर्तों की सलीब पर कभी नहीं चढ़ सकता। ये संपत्ति मेरी है, जिसको जितना चाहूं देने का अधिकार मेरा है। वैसे अगर तूने अपनी मर्जी से विधवा विवाह किया तो तुझे तेरे हिस्से का एक आना भी नहीं मिलेगा। अब तुम जा सकते हो। ब्रह्मानंद, तुम भी जाओ, कल सुबह आ जाना कि दूसरा वसीयतनामा तैयार हो सके।
3: इतनी रात गए कौन हो सकता है? आ रहा हूं भाई। अरे हरलाल बाबू, आप और इस समय कुशल तो है?
2: इस समय घर में और कौन है?
3: बस मैं और रोहिणी बिटिया।
2: कल सुबह दूसरा वसीयतनामा लिखा जाएगा, और मेरे हिस्से में इस बार शून्य पड़ेगा, क्योंकि मैं विधवा से विवाह करने जा रहा हूँ। कहो तो कुछ कमाई करवा दूँ?
3: जी जी बड़े भैया, मैं कुछ समझा नहीं।
2: पूरे 1000 रुपये, ये 500 तुम अभी रख लो, और बाकी रुपए।
3: पर मुझे करना क्या होगा?
2: एक और वसीयतनामा लिखना होगा, 12 आना मेरे हक में, उस पर पिताजी के जाली दस्तखत मैं बनाऊंगा, और फिर असली वसीयतनामे पर दस्तखत होने के बाद अदला बदली। ये काम भी तुम ही को करना होगा, बिना हर्रे और फिटकरी के 1000 रुपए तुम्हारे खड़े हो जाएंगे।
3: आपकी खुशी के लिए मैं जाली वसीयतनामा जरूर लिख दूंगा, पर यह हेरा फेरी मुझसे ना हो सकेगा।
2: ठीक है ठीक है, तुम वसीयतनामा ही लिख दो, हेरा फेरी मैं किसी और से करा लूंगा।
4: अरे हरलाल चाचा,

0: बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े।
1: ब्रह्मानंद जी नहीं है क्या?
0: कहीं गए हैं।
1: कोई बात नहीं, मैं इस समय तुमसे ही मिलने आया था रोहिणी।
0: जी मुझसे? बैठिए।
1: पर सुनो तो, मुझे बिठा कर तुम कहाँ चली?
0: जरा मछली छोंक दूं चाचा, नहीं तो तेल जल जाएगा। हाँ खाना खाने की इच्छा हो तो आपके लिए महीन चावल चढ़ा दूं।
1: चढ़ाना ही है तो चढ़ा दो, पर मैं तुम्हें एक दिन की याद दिलाने आया था, वही दिन जब तुम गंगा स्नान करके लौट रही थी और तुम दूसरे यात्रियों से बिछड़ गई थी, याद है ना?
0: हाँ सब याद है, आपने ही मुझे उन नर पिशाचों से बचाया था। चाचा मैं आपका ये ऋण कभी न चुका पाऊंगी, मरते दम तक नहीं।
1: अगर चाहो तो तुम उस ऋण को चुका सकती हो रोड़ी।
0: जी आप कहना क्या चाहते हैं?
1: अरे वो रसोई घर में रोशनी कैसी हो रही है, शायद तेल जल गया।
0: हाँ सभी कुछ तो जल चुका है, मेरा सुहाग, मन, अभिलाषा, बाकी बचा ही क्या है।
1: तुमको बस इतना ही करना है, ये वसीयतनामा देख रही हूँ ना, इसे पिताजी की अलमारी के दराज में रखे हुए असली वसीयतनामे से बदलना है।
0: चाचा
1: तुम्हारा मेरे घर में हर समय आना जाना है, कोई तुम पर शक नहीं करेगा। फिलहाल ये 1000 रुपए रख लो, काम हो जाने पर 1000 और दूंगा।
0: मालिक की पूरी संपत्ति मिलने पर भी मैं चोरी नहीं करूंगी।
1: ठीक है, काश आज मेरी पत्नी जिंदा होती, काश मैंने किसी विधवा से विवाह रचा लिया होता तो आज तुम्हारे आगे मुझे हाथ पसारने की नौबत आती रोड़ी।
0: क्या नौबत आती? तो क्या आप सचमुच विधवा से विवाह करने का इरादा रखते हैं? हाँ मैंने किसी से सुना तो था।
1: विधवा से विवाह शास्त्र सम्मत है रोहिणी।
0: सुन तो तभी से रही हूँ चाचा, जिस दिन मेरी मांग सुनी हुई थी, पर बारात तो दूर, अब तक किसी ने विवाह की बात तक नहीं चलाई।
1: मैं ही वो आदमी हो सकता हूँ जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा रही हो, आज बात आई है तो कल को बारात भी आ सकती है।
0: जी चाचा जी आप ये क्या कह रहे हैं?
1: मैं तुम्हारा कोई सगा या नाते का चाचा तो हूँ नहीं।
0: वसीयतनामा रख जाइए।
2: कौन है? इतनी रात गए कौन होगा? कैसा मूर्ख हूं मैं भी। अरे चिनम तो ठंडी पड़ी। अरे हरिया, अरे ओ हरिया, एक आध चिनम ही चढ़ा दे। क्या चीज होती है यह फिर, लगता है जैसे अभी इस कमरे से कोई बाहर गया है।

0: क्या कर रही हो रोहिणी
1: जी? हरी बाबू आप?
0: हाँ मैं। खबर क्या है?
1: हेरा फेरी।
0: मुझे इसी क्षण जाना है।
1: इसी क्षण जाओगे इतनी जल्दी?
0: मुझे यहाँ रुकने का मौका ही नहीं है।
1: तो कही किसने है?
0: वसीयतनामे ने।
1: वो तो मेरे पास है ही।
0: तो क्या वसीयतनामा मुझे न दोगी?
1: फर्क ही क्या पड़ता है, वो चाहे आपके पास रहे चाहे हमारे।
0: यदि उसे मुझे नहीं देना था तो फिर चुराए है क्यों?
1: आपके लिए हरलाल बाबू, आपके लिए और आप ही के लिए वो मेरे पास सुरक्षित रहेगा, उस दिन के लिए जब आप सचमुच विधवा विवाह कर लेंगे। आपकी कसम हरलाल बाबू, वसीयतनामा मैं आपकी पत्नी के हवाले कर दूंगी।
0: ये कभी नहीं हो सकता रोनी, कभी नहीं। तुम जितना भी चाहे धन दौलत मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं जालसाजी करता हूँ, चोरी करता हूँ अपने हक के लिए। तो तुमने किसके हक के लिए चोरी की है? तुमने जालसाजी मेरा साथ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर मैं तुम्हारा साथ निभाने को तैयार हो जाऊँ।
1: हरलाल बाबू,
0: कुछ भी सही, फिर भी मैं कृष्णकांत राय जमींदार का लड़का हूँ। जिस औरत ने मेरे बाप की अलमारी से वसीयतनामे की चोरी की है उसे मैं अपनी गृहिणी कभी नहीं बना सकता, कभी नहीं, कभी नहीं।
1: अगर अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल हो तो यहाँ से भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ तुमसे।

0: वरुणी पोखरी के घाट पर बैठी हुई ये सुंदर देह किसकी हो सकती है? अरे ये तो रोहिणी है। इसकी आंखें आंसुओं से भीगी भीगी सी लग रही है, चेहरे के हुमक भी रही है, पर रो क्यों रही है? कैसा मूर्ख हूँ मैं भी, रो कोई रहा है और प्रश्न अपने आप से कर रहा हूँ। विधवा के जीवन में वेदना के सिवा और रहता ही क्या है? टीस, तड़प, विरह सब एक ही तो हैं। ठीक है, मुझे दबे पाँव उस तक चलना होगा।
1: रोहिणी, तुम अब तो रात भी हो चली है। चंद्रमा की पहली किरणें वरुण पोखरी के जल को नहलाने लगी हैं। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? अरे खड़ी क्यों हो गई रोहिणी? क्या मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बोलो ना, तुम्हें क्या दुख है? शायद कोई उपाय कर सकूँ। अगर कभी कोई कष्ट हो, कोई भी बात, तो ज़रूर बताना। दूसरों का दुख बांटने में मुझे बड़ा संतोष होता है, पर अपना दुख।
2: गोविंद बाबू, आपको किस बात का दुख है? सभी कुछ तो दिया है भगवान ने। मालिक जैसा ताऊ, जो आपको बेटे से भी अधिक मानता है। फूल जैसी मालकिन।
1: मालकिन? अच्छा, भ्रमर की बात कर रही हो। वो तो भी बच्ची है, दाम्पत्य जीवन की वर्णमाला का वो पहला अक्षर तक नहीं जानती। तुम मानो या ना मानो, पर सच कहता हूँ, तुम्हारे रूप और यवन के आगे ये चंद्रमा, चांदनी, वरुण पोखरी सब मिट्टी समान है। तुम उससे कभी किसी बात का अनुरोध नहीं करोगी रोहिणी, आदेश दोगी। देखना, देखना मैं किस तरफ से चुटकी बजाते बजाए लाया करूँगा।
2: बताऊँगी गोविंद बाबू, ज़रूर बताऊँगी, पर अभी नहीं। और आपको मेरी बातें माननी ही पड़ेंगी।
1: अवश्य रोहिणी।
3: रोहिणी, कौन है, कौन है? रोहिणी, मैं हूँ, तेरे अंदर वास करने वाली सुमति नामक देव कन्या। ओह सुमति, कहो क्या बात है? कृष्णकांत का असली वसीयत नामा उन्हें लौटा दे। लेकिन लेकिन ऐसा करने से मैं मालिक की नजर में गिर जाऊंगी।
4: तो सभी बातें गोविंद लाल से क्यों नहीं कह देती? उसे क्यों नहीं लौटा देती मालिक का असली वसीयत नामा? उसमें तो गोविंद लाल के फायदे की ही बात है। कितना दयावान है वो, फिर क्यों नहीं उसके पैरों पर गिर पड़ती? वो तेरा अपराध जरूर क्षमा कर देगा।
2: नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, सारा भेद खुल जाएगा। मैं अपना खेल नहीं बिगाड़ सकती। वसीयत नामा मैं स्वयं फाड़ डालूंगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हो सकता है मालिक के बाद हरलाल ही मेरे कब्जे में आ जाए।
3: ये तू कह रही है रोहिणी? क्या तू ऐसा कर सकेगी? वसीयत नामा लौटाने में ही तेरा भला है। क्या तू इससे इनकार कर सकती है कि तू गोविंद लाल के प्रति आवश्यकता से भी अधिक आकर्षित है? क्या तू नहीं जानती कि गोविंद लाल तुझे देखता है तो फिर देखता ही रह जाता है?
4: अच्छा, मैं जाती हूँ रोहिणी, पर मेरी बात को ध्यान में रखना, शायद कोई राह तुझे स्वयं सूझ सके।
2: गोविंद लाल को तो मैं बचपन से देखती चली आ रही हूँ, लेकिन कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर आज ये सब जाने कैसे हो गया?
4: ठीक है, चाहे जैसे भी हो, वसीयतनामा दोबारा मालिक की अलमारी में रखाऊंगी। हाँ, आज ही रात को।

0: शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं। अरे यहाँ तो दीपक जल रहा है, लाओ बुझा दूँ। दीपक तो बुझ गया, लेकिन लेकिन मालिक की नाक बोलना क्यों बंद हो गई?
1: कौन? हरिया, दीपक क्यों बुझा दिया? बड़ा अंधेरा है, कौन है, कौन है? ठहरो, दीपक जलाता हूँ। मैं दीपक जलाता हूँ।
0: मैं हूँ मालिक, रोहिणी, ब्रह्मानंद की भतीजी।
1: रोहिणी और यहाँ, वो भी इस समय? क्या बात है रोहिणी, इतनी रात गए अंधेरे में यहाँ क्या कर रही थी?
0: चोरी।
1: चोरी? तू चोरी करने आई थी? क्यों दिल लगी कर रही है, बोल ना।

0: क्या बात है?
1: आप न माने मालिक, ये आपका बड़प्पन है। मैं जो कुछ चुराने आई हूँ अब उसे अपनी आंखों से देख लीजिए।
0: अरे अरे अरे, अरे, अरे ये मेरी दराज से क्या चीज निकाल रही है? ये तू क्या फाड़ रही है? ये तू क्या फाड़ रही है रोहिणी? ये तो कागज फाड़ डाला, ऊपर से जला भी दिया। तेरा दिमाग तो सही है, अब बोलती क्यों नहीं? क्या जलाया तूने?
1: वसीयतनामा।
0: रोहिणी,
1: जाली वसीयतनामा था सरकार।
0: जाली वसीयतनामा? फिर मेरा असली किधर है?
1: उसे मैंने आपकी दराज में सुरक्षित रख दिया है।
0: किसने तैयार किया है जाली वसीयतनामा? कहां से मिल गया वो तुझे?
1: इसे किसने तैयार किया है ये तो मैं नहीं जानती मालिक, पर था इसी दराज में।
0: तुझे कैसे पता चला?
1: मालिक ये मैं नहीं बता सकूंगी।
0: तुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, मैं सब समझ गया। जरूर हरलाल ने तुझे रुपए पैसों का लालच दिया।
1: मैं अपराधिनी हूँ मालिक, मुझे जो चाहे सजा दीजिए।
0: सजा? सजा तुझे जरूर मिलेगी, बस पौ फट जाने दे, तेरा सिर मुड़वा कर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। रात भर अपने आप को यहीं पर कैद समझ। आओ गोविंदलाल, इधर देखो, पहचानते हो इसे?
2: रोहिणी, तुम?
0: रोहिणी नहीं, चोरनी। ये हमारी दराज से वसीयतनामा चुराने आई थी, मेरी आंख खुल गई, इसलिए अपने साथ लाया हुआ जाली वसीयतनामा इसने फाड़ डाला।
2: पर ताऊ जी, रोहिणी क्या कहती है?
0: क्यों रोहिणी, क्या ये सही है?
1: मैं आप लोगों के हाथ पड़ चुकी हूँ, जो करना हो कीजिए, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगी।
0: देख रहे हो बदमाशी, अब उल्टे हमदर्दी पाने के लिए रो रही है।
2: कौन बदमाश नहीं है ताऊ जी, इसकी तह में बदमाशी के अलावा कुछ और बात है।
0: अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है गोविंदलाल।
2: तो क्या इसे थाना भेज दिया जाए?
0: मेरे लिए थाना कचहरी क्या है, मैं स्वयं थाना हूँ, स्वयं मजिस्ट्रेट, इसे जेल भेज कर क्या होगा?
2: तो फिर क्या करना है?
0: सिर मुड़ाकर गांव से बाहर निकाल दो, ताकि फिर कभी इस इलाके में ना आने पाओ।
2: क्यों रेहड़ी, क्या कहती हो, कुछ तुम्हें भी कहना है?
1: नुकसान ही क्या है छोटे सरकार।
2: क्या? आपसे मेरा एक अनुरोध है ताऊ जी, रोहिणी को इस बात छोड़ दीजिए, मैं इसकी जमानत लेता हूँ। मैं इसे अंतरपुर में ले जाकर इससे उन बातों को जानना चाहता हूँ जिसे ये आपके सामने बता नहीं रही है। इस कांड के पीछे जरूर कोई चाल है।
0: तो ले जाओ, अगर यही करना था तो मुझसे कह देते, मैं ही यहाँ से चला जाता। जाने क्या हो गया है आजकल की छोकरों को, घर में पत्नी मौजूद है फिर भी छी छी छी छी बेहया कहीं का।
2: ताऊ जी का कहना है तुम दराज में जाली वसीयतनामा रखकर असली वसीयतनामा चुराना चाहती थी, क्या ये सच है रोहिणी?
1: ये बात नहीं है गोविंद बाबू।
2: तो फिर बात क्या है, तुम बताती क्यों नहीं?
1: क्या आप हमारी बातों पर विश्वास करेंगे?
2: कभी कभी अविश्वसनीय बातों पर विश्वास कर लेता हूँ, तुम बताओ तो सही।
1: मैं तो तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूँ, चलो अगर यही जिद है तो बता देती हूँ, एक बार परीक्षा ही सही।
2: बोलो रोहिणी, समय बहुत कम है, ताऊ जी का गुस्सा बहुत खराब है।
1: जी लेकिन इस दुख भरी कहानी को सुनाने से क्या होगा, उल्टे मेरी ही रुसवाई होगी, बदनामी होगी।
2: हो सकता है कोई उपकार ही कर सकूं।
1: कैसा उपकार?
2: हो सका तो ताऊ जी से अनुरोध करूंगा, वो तुम्हें क्षमा कर दें।
1: नहीं बाबू, इस कलंक के बाद देश निकाला ही मेरे हक में होगा, बाकी बचे बाल आप कैंची मंगा दें, मैं उन्हें स्वयं काट दूंगी, और कुछ नहीं तो मालकिन के चोटी गूंथने में ही काम आ सकेंगे।
2: समझ गया रोहिणी, कलंक ही तुम्हारी सजा है।
1: आप समझ गए हैं तो मैं अब आपसे ही पूछती हूँ, क्या आप मुझे इस कलंक दंड से बचा सकेंगे?
2: ये अभी मैं कह नहीं सकता रोहिणी, बिना पूरा किस्सा सुने मैं कोई भी निर्णय नहीं ले सकता।
1: आप क्या जानना चाहते हैं?
2: जिस कागज को तुमने जलाया था वो क्या था?
1: जाली वसीयतनामा।
2: तुम्हें कहाँ मिला था वो?
1: मालिक की दराज में।
2: जाली वसीयतनामा ताऊ जी की दराज में कैसे आया?
1: मैं ही रखाई थी, जिस दिन असली वसीयतनामे की लिखा पड़ी हुई थी उसी रात को।
2: तुमको इसकी क्या जरूरत थी?
1: हलाल बाबू का अनुरोध था, उनका एक कर्ज चुकाना था।
2: फिर रात उसे बदलने की क्या जरूरत थी?
1: जाली वसीयतनामा चुराकर उसके स्थान पर असली वसीयतनामा रखने के लिए।
2: क्यों, जाली वसीयतनामे में ऐसी कौन सी बात थी?
1: हरलाल बाबू का बारियाना हिस्सा और आपका केवल एक पैसा।
2: पर मैंने तो तुमसे अनुरोध नहीं किया था, फिर अदला बदली की क्या जरूरत पड़ गई?
1: मन के हाथों मजबूर हो गई थी बाबू,

0: आपने मुझसे कोई अनुरोध नहीं किया था, किंतु जिसे इस जन्म में न पा सकी और फिर कभी न पा सकूंगी, बस केवल इसी कारण। याद करो बाबू, याद करो वरुणी पोखरी के किनारे बना हुआ आपका आराम महल, खिड़कियों से छन छन कर आती हुई चंद्रमा की किरणें, मधुरस लुटाते हुए पुष्पों की सुगंध। बस बाबूजी, बस आगे कुछ भी मत पूछिएगा। मैं एक अजीब से रोग से पीड़ित हूँ बाबूजी, इस रोग की चिकित्सा मेरे पास नहीं है, कोई भी छुटकारा नहीं है मेरे पास। विष मिल जाता तो खा लेती।
1: विष खाने से तुम्हारा कलंक वैसे ही रहेगा रोहिणी, मेरी मानो तो तुम रात की गाड़ी से गांव छोड़कर भाग जाओ। कलकत्ता में तुम्हारे लिए एक मकान खरीद दूंगा, ब्रह्मानंद चाचा को वहीं कोई नौकरी दिलवा दूंगा, धीरे धीरे लोग सब कुछ भूल जाएंगे।
0: क्या आप भी मुझे भूल सकेंगे?
1: शायद कभी नहीं, कभी नहीं। वैसे मैं आता जाता रहूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जाओ रोहिणी जाओ, पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। अरे रे, ये क्या कर रही हो?
0: क्यों बाबू, क्या पांव छूने का अधिकार भी मुझे नहीं है?
2: किससे बातें हो रही थी?
1: रोहिणी से।
2: क्या बातें हो रही थी?
1: तुम कौन होती पूछने वाली?
2: मैं तुम्हारी पत्नी, ब्याहता, गृहिणी, और कुछ परिचय दूं अपना?
1: नहीं भ्रमर, इतना ही काफी है।
2: इतनी देर तो तुम मुझसे कभी तकरार भी नहीं करते, क्या बातें हो रही थी रोहिणी रानी से?
1: भ्रमर, इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
2: सिर दबा दूं या?
1: मैं बगीचे में जा रहा हूँ, ताऊजी बुलाओ तो बता देना, वही कुछ देर आराम करूंगा, तबीयत ठीक हो जाएगी।
2: मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ।
1: वहाँ तुम्हारा क्या काम?
2: हाय, वहाँ का एकांत यहाँ कहाँ। मैंने तो सुना है वहाँ वरुणी पोखरी के शीतल जल में चांदनी की किरणें स्नान करने आती हैं, सुंदर फूलों की महक से सारा वातावरण सुगंधित रहता है। मैं तुम्हारी जीवन संगिनी होकर भी वहाँ तुम्हारे साथ नहीं जा सकती?
1: अभी तुम बच्ची हो भ्रमर, दो एक बसंत और देख लो, फिर दिन रात पड़ी रहना पोखरा के किनारे बने आरामगाह में। अच्छा मैं चलता हूँ, रात देर से लौटूंगा।
2: देर से लौटो या सवेर से, कौन किसी की प्रतीक्षा ही करता है? मेरा और तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? अब तक तुम मुझे बच्ची ही समझते हो, पत्नी कब समझोगे? कब जानोगे मेरे मन की बात? आखिर कब खिलेगा मेरे मन का कमल?

0: कहां गई रोहिणी की बच्ची? किसने भगा दिया है उसे? अरे कोई कुछ बोलता नहीं,
1: क्या बात है बाबा?
0: बहू, गोविंदलाल कहां है?
1: शाम को बगीचे में गए थे, अभी तक नहीं लौटे।
0: उफ, अब तो सवेरा भी हो चुका है, सूरज बांस भर ऊपर आ चुका है, वो बगीचे में भी नहीं है। जरूर रोहिणी को लेकर कहीं चला गया है। मैं जानता था उसके मन में चोर है। बेवकूफ लड़के, तुझे क्या मालूम मेरी बसियत में ही तेरा भला है।
1: ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो रोहिणी को लेकर चले गए? कब, कहां, किस लिए?
0: अब तुझे क्या बताऊं बहू, किस मुंह से कहूं, यही सब देखना ही मेरे नसीब में रह गया है। इससे तो यही अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेता, कम से कम जग हसाई तो न देखता। ये दवा मेरे किसी काम की नहीं थी, इसलिए मैंने इसे फेंक दिया। बहू, बहू मेरे पास आ बेटी, मुझे माफ कर देना बिटिया, मुझे माफ कर देना। हरिया, हरिया, जल्दी से कारिंदों को बुला। मुंशी जी अलमारी से कागज कलम निकाल लिए, दूसरा वसीयतनामा तैयार करना है, जल्दी जल्दी। मेरे पास समय न होने के बराबर है। लिखो, मैं कृष्णकांत राय अपने पूरे होश आवाज में भगवान को हाजिर नाजिर मानकर अपनी पूरी जायदाद का 16 आना हिस्सा अपने भतीजे गोविंदलाल की पत्नी भ्रमर को दे रहा हूं। गोविंदलाल का मेरी जायदाद पर तभी कुछ होगा जब बहू चाहेगी, और जब वो बहू से मन और तन दोनों का रिश्ता रखेगा। लाओ लाओ, जल्दी करो जल्दी करो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था कृष्णकांत का वसीयतनामा और लेखक का नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, गाने सुहाने कार्यक्रम का आगाज करते हैं जागते रहो फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और सुरों में पिरोया है मुकेश ने।

0: सच है क्या सब सच है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम मधुमती।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

मुकेश की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे आनंद फिल्म से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम कलाकार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा,

और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सौदागर फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं पिया का घर फिल्म से। इस गीत को सुरों में पिरोया है किशोर कुमार ने।

0: श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा इस अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
2: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अनूप जलोटा को।

0: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
1: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें।
1: आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। दारुल हुकूमत लखनऊ में तैयार नौसेना शौर्य वाटिका का आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इफ्तिताह किया। 19 करोड़ की लागत से तैयार ये नौसेना शौर्य वाटिका हिंदुस्तानी बहरिया की बहादुरी, जज्बे और तकनीकी सलाहियत को मानवन है। ये वाटिका सीजी सिटी में डेवलप की गई है। यहां कायम रिटायर्ड जंगली पोत INS गोमती सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। हिंदुस्तानी बहरिया और उत्तर प्रदेश महकमा सयाहत की मुश्तरका कोशिशों से तैयार ये ओपन एयर म्यूजियम जदीद इंटरप्रिटेशन सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है। इससे दारुल हुकूमत में सयाही सरगर्मियों में भी इजाफा होने की उम्मीद है। आज नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
2: लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहाँ पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है, और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे।
1: हुकूमत ने मगरबी एशिया तनाज़ों की वजह से आलमी तवानाई फराहमी में रखने को देखते हुए अवामी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों को 30 दिन का LPG जखीरा महफूज करने के अहकाम दिए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की मुश्तरका सेक्रेटरी सुजाता शर्मन ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत हिकमत अमली जखीरों के तवसुत से ईंधन तहफ़ मजबूत करने और बगैर किसी रखने के फराहमी यकीनी करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर मरकज पर फराहमी

0: कमी की कोई खबर नहीं है।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच कल इस मामले में दायर अर्जियों की समाअत कर रही थी। इनमें एक अर्जी में एनटीए के नौ तश्कील या इसके हटाने के अहकाम देने और इसकी जगह पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाइख्तियार और खुद मुख्तार इदारे के तश्कील का मुतालिबा किया गया था। बेंच ने मरकज से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की आइंदा समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा है कि हुकूमत नौजवानों के लिए फिक्रमंद है और यह यकीनी करने के लिए पुरहद है कि आगे ऐसी कोई चूक ना हो। दरियासना मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक का मामला बेहद अफसोसनाक है। डीडी न्यूज को दिए एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने यकीन दहानी कराई कि री एग्जाम का अमल बगैर किसी दिक्कत के मुनज्जम तरीके से मुनक़िद होगा।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल यकम जून से एक्टिव हो जाएगा। दरख्वास्त करने के ख्वाहिशमंद तलबा की आंसर शीट की तस्दीक और दोबारा तशखीस के शफाफ अमल को यकीनी करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसमें तशखीस का आला मेयार कायम होगा। बोर्ड ने कहा है कि तलबा किसी भी जानकारी के लिए सीबीएसई की टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800-1108-004 और रिजल्ट cbsc2026@cbsc.shiksha.in पर राब्ता कर सकते हैं। बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कल दो मीटिंगों में मुनक्किद होगा। पहली मीटिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी मीटिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इम्तिहान के लिए रियासत के 72 जिला में 1011 मराकज बनाए गए हैं, जहां तकरीबन 4.5 लाख लोग इम्तिहान देंगे। रियासत में गुज़िश्ता जुमेरात की रात से मौसम में आई तब्दीली से अवामी जिंदगी मुतासर हुई है। तेज आंधी तूफान बारिश और आसमानी बिजली से कई जिला में जानो माल का नुकसान हुआ है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक खातून समेत दो अफराद की मौत हो गई और कुछ दीगर जख्मी हो गए। जौनपुर में भी बारिश से दर्ज हरारत में गिरावट आई है। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को फौरी फील्ड में जाकर सर्वे और राहती रकम जल्द जारी करने के अहकाम दिए हैं। वजीर आला ने रियासती आवाम खराब मौसम के दौरान अलर्ट रहने, गैर जरूरी सफर से बचने और इंतजामिया के जरिए जारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के दरमियान बारिश और आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत।
4: आशाएं ऐसी हों जो मंजिल तक ले जाएं, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर कर दें। तो भाई, हमारा और आपका इतना प्यार भरा जो संबंध है, उसी संबंध को निभाने के लिए आ गई आपकी रेडियो सखी लता चंदोला। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। बहनों, ये जो गर्मियों की छुट्टी है ना भाई, अब तो शुरू ही हो चुकी है। लगभग सभी स्कूल्स बंद हो चुके हैं और हम जो है बहनें हैं वो थोड़ा सा सुकून में आ चुकी हैं, भले थोड़े ही समय के लिए, लेकिन भाई थोड़ा तो सुकून है ही। जो सुबह की जो हड़बड़ाहट होती है, भाई टिफ़िन बनाना है, नहाना है, धोना है, पूजा करनी है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना, ये सारी चीज़ों से कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन कुछ तो निजात मिला है। लेकिन

बहनों, ये गर्मियों की छुट्टियां ना खुद को यदि हम रिसाइकिल करने के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। वही गर्मियों की छुट्टियों का हम सही उपयोग अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को सुधारने यानी रिसाइकिल के लिए हम कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में योग, नई भाषा सीखने का जो हमें हुनर आ सकता है, या कोई नया कौशल सीख सकते हैं, पुरानी बेकार चीज़ों से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाना शामिल करें। यह आपको तरोताज़ा तो रखेगा ही रखेगा, साथ ही साथ आपको रचनात्मक भी बनाएगा। आपकी ऊर्जा का और समय का सकारात्मक उपयोग करने के लिए भाई हम अपने को कुछ तरीकों से रिसाइकिल कर सकते हैं। वो है सबसे पहले कि भाई बेकार चीज़ों से हम रचनात्मक जो कला है उसका प्रयोग करते हैं। आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेकार से बेकार चीज़ें हैं, जो लगता है कि ये वेस्ट हैं, लेकिन उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बेस्ट चीज़ें बना सकते हैं। शारीरिक और मानसिक कायाकल्प कर सकते हैं। भाई समय है, सुबह का समय हमको मिल रहा है जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल टाइम होता है यदि हम अपने शरीर को दें। थोड़ी देर हम योग करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें या मॉर्निंग वॉक के लिए जाएँ, टहलें 20 मिनट 30 मिनट जितने भी देर हम वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने को हम समय दें, अनुलोम विलोम करें। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी शारीरिक कायाकल्प तो करेगी करेगी, साथ ही साथ हमारा जो है मानसिक विकास भी करेगी। नए कौशल और शौक को सीखें। भाई हम जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं देखती थी एक बहुत बड़ी आंटी थी, मतलब उस वक्त हम बहुत छोटे थे और वो अप्रॉक्स करीब करीब 60 साल की थी। लेकिन जब हमारे समय में हमारी गर्मियों की छुट्टी होती तो हमारी मम्मी हम लोग को सिलाई कढ़ाई ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए भेज देती थी, तो हम देखते थे वहाँ पर वो आंटी भी आती थी सीखने के, तब हम सोचते थे कि इनको क्या ज़रूरत है। लेकिन आज हम ये सोचते कि नहीं, उन्होंने कितना अच्छा अपने समय का सदुपयोग किया। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारी कढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें अपने घर में लगा लगा के रखी हुई थी। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ये, जो हमारे शौक हैं ये कभी भी हमें ख़त्म नहीं करने चाहिए। जब हमें समय मिले इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और पर्यावरण और प्राकृतिक जो संसाधन है उनसे भी हमें थोड़ा सा जुड़ाव करना चाहिए। भाई पूरे टाइम तो हमको समय नहीं मिलता जब बच्चे स्कूल जाते हैं या भाई घर पे जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन इस समय में हम किचन गार्डन बना सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि भाई देखो छोटे छोटे जो हैं हम टमाटर से, हम बैंगन के बीजों से या कोई और चीज़ों के जो हमारे घर में सीड्स हैं उनको हम किस तरीके से लगा के हम पेड़ पौधे बो सकते हैं और घर पे सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे ना एक बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी आएगी। और दूसरी चीज़ जो है, जो हमारा घर का जो कचरा निकलता है उसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं अपने घर की जैविक खाद बनाने में अपने पौधों के लिए, ये भी हम बच्चों को बता सकते हैं। और भाई बच्चों को भी इस चीज़ को सिखाएं कि कूड़ा हमें इधर उधर नहीं फेंकना है और खुद भी हमें नहीं फेंकना, इस बात का भी ख्याल रखें। एक रिपोर्ट से बहनों ये पता चला है कि छुट्टियों और त्योहारों के समय में घर के कचरे में 25% तक का इजाफा हो जाता है। जो तो इसे समझें कि हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए ना सिर्फ आराम का समय होता है बल्कि यह पूरे परिवार के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने का बेहतरीन मौका होता है। इसे फैमिली टाइम में बदलकर आप अपने बच्चों के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं और अपना रिश्ता और गहरा बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात बहनों, इस समय में हम अपने सास या माँ के घर भी जाते हैं जो उनसे दूर भाई जो हम लोग हैं उनसे जिन जो लोग दूर रहते हैं वो लोग तो जाते ही जाते हैं, तो बच्चों को भी उनकी अहमियत पता चलती है जब हम उनके पास जाते हैं। परिवार क्या है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी का स्नेह उनको प्राप्त होता है। और सबसे ख़ास बात, जो माइक्रो फैमिलीज़ में बच्चे रहते हैं उनके अंदर एक शेयरिंग करने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो यदि वो वहाँ पर जाते हैं तो उनके अंदर शेयरिंग की भावना का भी विकास होता है, जो कि शायद अपनी जड़ों से दूर होने के कारण उनके अंदर विकसित नहीं हो पाता। बच्चों को अपने बड़े बुजुर्गों के साथ छोड़ें, उनके अनुभव जो हैं बच्चे के मानसिक विकास पर गहरा असर डालते हैं। तो बहनों इस समय को सही तरीके से उपयोग करें, हम अपने आप को और अपने रिश्तों को रिसाइकिल कर सकते हैं। भाई सुकून के पल सब कुछ पाने से नहीं आते, सुकून के पल आते हैं खुद को पाने के बाद। सुकून के पल खुद खुशी पाने से नहीं आते, सुकून के पल आते हैं औरों को खुशियां बांटने से। तो बहनों औरों को खुशियों के साथ साथ अपने मन को भी हमें बहुत सारी खुशियां देनी हैं और ये जो समय है इसका प्रयोग करना है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सवाल कम और उलझने ज्यादा होती हैं, पर लता जी की आवाज में छुपी यह धुन हर उलझन को शांत कर देती है। तो आइए सुनते हैं

बहनों, वास्तव में कभी कभी ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं कि महसूस होता है कि क्या हो रहा है, अजीब सा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है ना, यदि हम धैर्य अपने अंदर बना के रखें तो धीरे धीरे हमारी सारी स्थितियां जो होती हैं वो सबसाइड होती चली जाती हैं और हम सुकून के पल में आ जाते हैं। भाई, थोड़ा सा सुकून भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये ज़रूरी तो नहीं कि कभी ज़रूरतें जो होती हैं ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा हम बांध के रखें, उनको लिमिट में रखें और अपनी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। भाई, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव, चिंता या बीमारी से जूझ रहा है। गलत खान पान, मोबाइल और कंप्यूटर का अधिक उपयोग और व्यायाम की कमी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रही है। ऐसे में योग एक ऐसा सरल और प्रभावी उपाय है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यदि हम किसी प्रकार से सैर या तेज वर्कआउट नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई जो चल फिरने में थोड़ा सा कभी कभी अक्षम हो जाते हैं तो नहीं कर चल सकते, तो ऐसे में जो योग है वो बैठे बैठे हम आराम से कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा तो बढ़ाता ही है, मन को भी शांत रखता है, आत्मविश्वास मजबूत रखता है और सबसे बड़ी बात, यह सदा युविका बनाए रखता है। यदि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दें बहनों, तो बहुत सारी ऐसी अदाकाराएं थीं जो कि जब आई थी फिल्म इस क्षेत्र में तो वो बहुत खूबसूरत नहीं लगती थी, उनका जो है बॉडी की फिटनेस बहुत ज़्यादा नहीं दिखती थी, लेकिन जब वो आज की डेट में 50-55 की उम्र पार कर चुकी हैं और इतनी खूबसूरत लगती हैं जैसे लगता है कि वास्तव में ये युविका हैं एकदम। तो भाई, समय भी सही चल रहा है भाई, 30 से 60 मिनट में थोड़ा सा अपनी सेहत पे यदि हम ध्यान दें तो हम अपने आप को फिट महसूस करा सकेंगे। और साथ ही साथ यदि बच्चे घर पे हैं ना, तो यदि आप जैसा करेंगी वैसा ही बच्चे भी फॉलो करेंगे, तो आप भी करिए, अपने बच्चों को भी कराइए। भाई, योग भारत की सबसे प्राचीन परंपरा है। खुद को स्वस्थ रखने के लिए, जिसको पूरा विश्व मान चुका है कि वास्तव में कि योग जो था ये एक बहुत ही एक मतलब ऐसी जो व्यायाम है जो हमें इंटरनली और मेंटल रूप से दोनों रूप से स्वस्थ रखता है, तभी तो देखिए ना बहनों इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस का रूप भी दे दिया गया और अंतर पूरे विश्व ने इसको जो है माना। तो थोड़ा सा भाई, जब हमारे देश की ये चीज़ है ये, तो हमें भी थोड़ा सा समय निकाल के योग करना चाहिए। सही समय चल रहा है, थोड़ा सा इसका उपयोग करें और इस गीत को साथ ही साथ गुनगुनाते भी रहें।

बहनों, अब थोड़ा सा हम बच्चों की भी बातें करते हैं कि भाई बच्चों को ये जो छुट्टियां चल रही हैं इसमें हम थोड़ा सा किस चीज़ की ट्रेनिंग दें, सेल्फ डिफेंस की। समय पहले से काफ़ी बदल चुका है, बच्चे स्कूल जाते हैं, खेल कूद में भी भाग लेते हैं, ट्यूशन या अन्य कई कामों के लिए बाहर जाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भाई हमारी बन जाती है। तो केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों को आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस की भी शिक्षा देना उतना ही आवश्यक हमारे लिए हो गया है जितना आजकल अन्य चीज़ें हम सिखाने पर जोर दे रहे हैं। सेल्फ डिफेंस का अर्थ है केवल लड़ाई करना नहीं बल्कि मुसीबत पड़ने पर उस परिस्थितियों का सुरक्षा पूर्वक उससे निकलकर बाहर आना और सही निर्णय लेना भी होता है। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग में बच्चों में आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, वे डरने के बजाय समझदारी से परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं। तो सबसे पहले बहनों, इस हेतु भाई माता पिता को ही सचेत होना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों को ये बताना होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको गुड टच और बैड टच के बारे में हमें ज़रूर बताना है और बच्चों से इस संबंध में खुलकर भी बात करनी है। हमारी हेजिटेशन, जो हम थोड़ा सा बच्चों से ये सारी बातों को हेजिटेट करते हैं बात करने में, वो इम्पॉर्टेंट नहीं रखती। जो हमारी बच्चे की सुरक्षा वो ज़्यादा जो है मायने रखती है। तो बच्चों को सबसे पहले सेल्फ डिफेंस सिखाने से पहले कहाँ पर हमें सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है ये तो पता होना चाहिए। कौन व्यक्ति कैसे उसको देख रहा है, कैसे क्या टच कर रहा है, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो ये कार्य सबसे पहले माता पिता को, भाई आजकल एकदम गोल्डन पीरियड चल रहा है, अपने बच्चों को भाई अपने बगल के अपने पास में सुलाइए दिन में और उनसे थोड़ा सा उनके स्कूल की बातें, थोड़ा आसपास की बातें करिए और समझिए कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे के साथ कोई इस तरह का मिसबिहेव हो रहा हो। उन्हें ये समस्या बातों को समझाएं कि अपनी परेशानियों को अपने माता पिता को ज़रूर कहें। यदि घर के बाहर उनके साथ कोई दिक्कत हो रही है और बाहर है, उसी वक्त उनको निर्णय लेना है, तो पुलिस से या शिक्षक से या हेल्पलाइन नंबरों से वो कैसे सहायता ले सकते हैं। भाई आजकल कई स्कूलों में और संस्थाओं में कराटे, ताइक्वांडो, जूडो की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इससे बच्चों का शारीरिक विकास तो होता ही है और मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। जो बच्चों या बच्चियाँ किसी कारण से ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाते, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हम वार करके खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हमें बच्चे को बताने में हेजिटेशन हो रहा है, तो सोशल मीडिया भी इस चीज़ सब चीज़ों का बहुत बड़ा अच्छा साधन है जिसमें हम बच्चे को ये सारी चीज़ें समझा सकते हैं। सेल्फ डिफेंस बच्चों को केवल सुरक्षा ही नहीं देता बल्कि अनुशासन, साहस और आत्मनिर्भरता भी सिखाता है। बच्चों को मजबूत बनाइए, डर को नहीं, उन्हें आत्मरक्षा सिखाइए ताकि वे हर परिस्थिति से सुरक्षित निकल सकें। भाई बच्चे हमारे हैं तो जिम्मेदारी भी हमारी है। हम ये सोच के कि बगल वाला देख लेगा, पुलिस वाले देख लेंगे, भाई जब हम अपने जेवर जवरात को, हम अपने ऑर्नामेंट्स को हम किसी पड़ोसियों को या किसी अन्य को

दे के नहीं जाते, उसकी सुरक्षा का इतना बड़ा ख्याल रखते हैं कि तमाम तरह के लॉकर्स हम बना बना के उनको रखते हैं। तो जो जीवन के हमारे ऑर्नामेंट्स हैं, हमारे बच्चे, तो उनको हम क्यों ना सुरक्षित रखें। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है उन सारी चीज़ों का त्याग करें, बच्चों को से खुल के बात करें, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है उनसे उनकी अंदर की बातों को निकलवाने की कोशिश करें और उनको आत्मरक्षण ज़रूर सिखाएं और इस गीत का आनंद लें।

0: भाई ये गर्मियों का सीज़न ही ऐसा होता है कि इसमें जुदाई जो होती है तो मारी जाती है, लेकिन ठीक है, जुदाई के बाद जो हमारा भाई हम मिलते हैं, मुलाकात होती है, वो भी एक असीम प्रेम और स्नेह का भाई बढ़ा कर आता है, बढ़ कर ही आता है। बहनों भाई अब थोड़ी सी हम लोग इसकी बातें कर लें, समसामयिक बातें, थोड़ा सा भाई मौसम की। देखिए लू तो अभी थोड़ा सा कम चल रही, लेकिन गर्मी तो है ही, तो ऐसे में क्या है, हमें गर्मियों से और लू से कैसे बचना है कि भाई अगर ज़रूरी ना हो तो थोड़ा सा बाहर ना निकलें 10 बजे के बाद, खास करके बच्चे और बूढ़े जो हैं, उम्रदराज लोग, वो लोग ना निकलें। बीमार हैं तो वो आप पहले और या शाम के समय में अपने कामों को कर लें। अपने साथ पानी की एक बोतल ज़रूर लेके चलें, स्वच्छ पानी घर से लेके चलें, कहीं पे भी ऐसे वैसे पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मियों के समय में हमारी जो होती है वो इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है और हम जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, पेट की कोई भी परेशानी हमें हो सकती है। आजकल देखिए ना बहनों, अपने इर्द गिर्द ही हम देख रहे हैं एक ऐसा फल जिसका नाम ही आम है, आम का मतलब ही साधारण है, तो वो साधारण रूप से हमको मिल जा रहा है, कहीं पे भी हम खड़े हों तो अगर आम का पेड़ है तो एक ना एक वो हमें आशीर्वाद के रूप में टपक के दे ही देता है। तो भाई आम को थोड़ा सा उबाल लें, उसका पना बनाएं, खुद भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। नींबू भी अफरात हमारे बाजार में इस समय आया हुआ है, नींबू का पानी पिए और कोशिश करें कि जो पानी है नींबू का पानी वो हम चीनी उसमें ना मिला के पिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम अनावश्यक इतनी चीनी पी जाते हैं, इतनी चीनी खा जाते हैं कि जो कि आगे जाके हमारे फैट तो हमारे शरीर का बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारी शुगर जैसी बीमारियों को भी अपने साथ लेकर आता है। बच्चों को भी कोशिश करें, जो बच्चे आजकल सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, ये सारी चीज़ों को की बजाय बच्चों को आम का पन्ना है, नींबू का पानी है, बेल का शरबत है और भी बहुत सारी तमाम तरह कि जैसे तरबूज है, खरबूज तो खैर खा सकते हैं, लेकिन तरबूज का भी हम जूस निकाल के उसको भी हम पी सकते हैं, वो बच्चों को पीने के लिए दें। और ना खाने के समय में बच्चों को खीरा है ना, जो कि प्रचुर मात्रा में इस समय बाजार में मिल रहा है, उसको भी हम बच्चों को दें। तो ये सारी चीज़ों को करेंगे ना तो हमारा तो जो है शरीर तो बहुत अच्छा रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ बॉडी हमारी डिटॉक्स भी होती चली जाएगी। जैसे अगर दिन भर में हम पानी पीते हैं, एक बॉटल में हम थोड़ा सा खीरा काट लें, थोड़ा नींबू के जो फाहे हैं वो निकाल के उसमें डाल दें, पुदीना की पत्तियाँ बहुत आसानी से इस समय वो उपलब्ध हो रही हैं, पुदीने की पत्तियाँ डाल दें, दिन भर उसी पानी को यदि हम पीते रहें तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी और जितना भी हमारा जो हम उल्टा सीधा खाए रहते हैं वो हमारा निकल बाहर हमारे पसीने के तौर पे या और तरीके से हमारा निकलता रहेगा। भाई छुट्टियां हैं लेकिन उसको हमें छुट्टियों की तरह नहीं बिताना है, क्योंकि देखिए भाई रामधारी सिंह दिनकर जी भी क्या बोल के गए हैं, कर्म भूमि पर चलो निरंतर, कर्म भूमि पर चलो निरंतर, थमना यहां निषेध है, जीवन की हर राह कठिन है, संघर्षों का ही गे है, आशा मत बांधो फल की, केवल कर्म तुम्हारा सत्य, परिश्रम से ही खिलते हैं सफलता के मधुर रथ, सफलता के मधुर रथ। इसी सुविचार के साथ अब अपने कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का विशेष कार्यक्रम नारी जगत, हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ, लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH service DD Direct Plus की हो तो इसमें

0: लेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
0: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
0: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
1: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर

सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिनका नाम धनिष यादव है, उम्र 26 वर्ष है, 11 अप्रैल की शाम 4 बजे से लापता हैं। उनका रंग सांवला है, लंबाई 177 सेंटीमीटर है। लापता होते समय उन्होंने काला टी शर्ट, नीला जीन्स और सफ़ेद व हल्के हरे रंग का जूता पहना हुआ था। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी मिले, कृपया वे तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें। सिद्धार्थनगर की रहने वाली 24 साल की रोशनी, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, 2 मई सन 2026 से गुमशुदा हो गई हैं। इनकी लंबाई 5 फीट की है और रंग गोरा है। इनके दाहिने हाथ पर ऑपरेशन का निशान भी है।

6 मई सन 2026 से प्रातः 8 बजे से शनि प्रसाद गुमशुदा हैं। इनकी आयु 22 वर्ष है। चेहरा लंबा है, आंखें सामान्य हैं, लंबाई 5 फुट 3 इंच है और रंग गेहुआ है। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी मिले, कृपया वे तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम खेती किसानी। इस कार्यक्रम में आज जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रमा शंकर सिंह। आपसे बातचीत करेंगे कृष्णचंद। आज का विषय है पशुओं में थनैली के लक्षण और बचाव।
2: पंच भाई, आज अपने बैठकी में आए रहे हैं डॉक्टर रमा शंकर सिंह। आप पशुपालन विभाग में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रह चुका हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर साहब, दुधारू पशुओं का दाम बहुत ज्यादा बा, अगर पशु के कोनो बीमारी हो गई तो काफी नुकसान उठावे के पड़ेला। आज हम आपसे ये जानना चाहब कि थनैली जौन हवे ये का हवे और पशुओं के कैसे प्रभावित करेला।
3: पशुपालक भाई, आप लोगों के हम बताओ ली चाहते कि ई जौन बा पशु जो थनैला रोग है, ये सबसे घातक बीमारी है। ये आप लोगों के बहुत ज्यादा नुकसान करेला। थनैला रोग जौन थन होला उसमें सूजन आ जाला, और सूजन के साथ साथ वो कड़ा भी हो जाला, लाल लाल हो जाला और कड़ा हो जाला, और उसमें जौन दूध आवेला ओहू में परिवर्तन आ जाला। जैसे दूध जौन बा फटल आवेला और उसमें खून भी आवे लगेला, जब ना ध्यान दिया जाला तो बाद में मवाद जैसा हो जाला। तो ए पर आपके ध्यान दे वाली ये चीज है, अच्छा, बहुत से थनैली दो तरह के माना जाला। एक तो जब हो जाला तब, आ एक जोन है नाय भैला जोन एक सब क्लिनिकल कहल जाला। जैसे आप देखल जाला जब आप दूध के रख ले जाला तो बाद में जब ओके गर्म कर जाला तो फट जाला
2: जी।
3: तो वो सब क्लिनिकल होला, वो सबसे खतरनाक होला। आप लोग ही सोचल जाला कि वो कोनो बात नहीं बा, लेकिन जब ऐसा होके शुरू में तो ओकर दवा आप करा ले जाए जल्दी से जल्दी। और एकर जो लक्षण है के और हम विस्तार से आपके बताए, और अलग अलग में जो कारण है उकरे अनुसार लक्षण भी हो जाला।
2: थनैली रोग कौने कारण से होला?
3: एकर तीन कारण बा। एक तो पशु अपने आप में जोन बा वो एक कारण है। अगर आप साफ सफाई नहीं रखल जाता, गंदगी में रखल जाता, तो वहू से जोन है थनैली हो जाए। जहाँ बैठी वहाँ सफाई नहीं कर जाये, तो पहला कारण ये है कि सफाई आपके रखे के बाद आप दूहल जाता, हाथ नहीं धोल जाता बढ़िया, तब वो थनैली हो जाये। ये तो कारण है जो आपके बस में ठीक कर जा सकेला। लेकिन मेन कारण एकर बा ये जीवाणु से होला, विषाणु से होला, अगर ऊपर चोट लग जाला तबो हो जाला, आ कवक से भी होला। तीन ही कारण मेन होला जोने से हो जाला।
2: कहले के मुख्य उद्देश्य ई बा कि साफ सफाई पशुशाला में बहुत जरूरी है, साथे साथे जे दूध निकालता तेकरे हाथ का भी सफाई जरूरी है। कोनो भी साबुन से बढ़िया से हाथ धो के ओकरे बाद जोन बा दूहे।
3: अब देखल जाए, पहले तो यह है कि जैसे बियाली जब जानवर आपके, आप उस समय ध्यान नहीं दे जला, जोन पीछे से गिरेला पिशाब करेला, अगर खेड़ी ठीक से ना गिरल तो ओकरे रास्ते जब पिशाब करी तो देखल जाला कि एकदम थने पे आके नीचे गिरेला। थनैली जोन होला जो थन के छेद होला वही से अंदर जाला। कौनो जीवाण जब अंदर चल जाये, चाहे विषाणु होके, चाहे बैक्टीरिया होके, चाहे फंगस होके, तो अगर थन के छेद जो नीचे होला अगर वहाँ खुलल लग गई तो अंदर जायी तो तुरंत जो है थनैली पैदा कर दे। तो सबसे पहले तो जब बियाला जानवर तो के खूब बढ़िया से आपके धूप पीछा सब धो के, थन धो के, तब के अपन हाथ धोवल जाए पहले, ओकरे बाद थन धो के तब दूध निकाल। हाँ, जो आप रोज यूज कर जाता साबुन और चीजें उसे आप धो ले जाए तब ओके दूध निकाल जाए। दूसरा, अब दूध तो मान लेहल निकाल गई लेहल गई, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ध्यान दे वाली ही चीज है, एक तो जानवर का सफाई हो गए, दूसरा जानवर में थन का सफाई हो गए, आपके हाथ का सफाई हो गए, तीसरा ही होला कि आप अक्सर का कर जला दूध निकाल के आप रख दिया जाला, और जानवर जो है आधा घंटा के अंदर अगर कहीं गंदगी में बैठ जाला तो थनैली होने के चांस ज्यादा होला। कारण ये है कि जो हम बतौली हबे कि थन के छेद जौन होला जब आप दूहल जाला तो खुलेला, ओकरे पहले बंद रहेला, ओमे जो है केराटिन नाम के चीज होला उ प्लग कर देला, बंद कर देला छेद के। तो उ जो है जब आप दूधवा निकालल जाला तो वो तो जब दाबल जाये तो निकल आवेला, आ ओकरे बाद जो है खुलल कितना देर रहेला, 17 मिनट तक वो छेद खुलल रहेला। अगर आपके केवल इतना ध्यान रहे कि दूध दहले के बाद जानवर के साफ जगह बांध दिया जा, आधा घंटा के बैठे न दिया जा, तो थनैली फैले के चांस जो है वो इसे एकदम कम हो जाला। तो हमेशा यही ध्यान दिया जाए, दुहले के बाद ओके कहीं साफ जगह बांध दिया जा।
2: मतलब कोनो भी एंटीसेप्टिक जोन दवाई बा ओकरे पानी से ओके धुल दिया जाए।
3: इसमें जैसे आवेला अलग से भी दवा आवेला, कुछ न मिले तो

0: जौन आप अपने लिए यूज कैल जाला, जौन प्रयोग में लाइल जाला, वही प्रयोग आप कैल जा।
1: एकरे अलावा और का सावधानी बरतल जा?
0: एकरे बजाय दूसर का सावधानी ही बरतल जाला कि आप जहाँ बांधल जाता जानवर उस जगह जौन बा आपके एकदम मुलायम होके चाहिए। मतलब ये ना कि उखड़ खाबड़ हो कि जानवर बैठे, बैठले के बाद जैसे चोट अगर लगेला तब वो थनैली हो जाला। आप देखेंगे कि जानवर एकदम हड़ाक दे बैठेला नीचे, नीचे कंकड़ पत्थर बा, ओहू कसर आ जाला। और जहाँ बांधल जा वहाँ गोबर और गंदगी न रहे, खासकर पिछला सिरा एकदम ओकर साफ रहे चाहिए, अगला तो रहे चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन यह है कि अपने जानवर के बचाव खातिर आप अपने बाड़ा के खूब साफ सुथरा रखल जा और जानवर के भी साफ सुथरा रखल जा। ये सबसे बड़ा आपके लिए सुझाव है।
1: अच्छा, थनैली के लिए आप बतौली हैं कि का सावधानी बरतल जा, एकरा बदे कोनो टीकाकरण भी उपलब्ध बा कि टीका लगवा लेल जाते बीमारी अपने पशुओं का नहीं हुई?
0: ना, एकर कोनो टीका नहीं बा। एकर आपके जो सबसे बड़ा उपाय साफ सफाई है बा। दूसर का बा कि एमे जैसे आपके जो बताए कि एकर कारण कितना होला, सबसे पहले अगर हो गई बात तो कारण के निवारण तो आपके करे पड़ी। अब ओमे बतौली है कि एक तो बैक्टीरियल जीवाणु से होला, दूसरा विषाणु से होला, तीसरा फंगस से होला, लेकिन ये आयल कहाँ से? सब आपके चारों तरफ जो वातावरण बा वही में रहे ना सब। तो एक अगर साफ नहीं बा तो वो कारण के आपके दूर करे पड़ी। अगर हो गई तो तत्काल आपके दवा कराए पड़ी, तब जाके सही होला। दूसरा होला एक इन्फेक्शन हो गई, फिर पता चलल कि एक जानवर के आप दुहल गए, अब फिर वही हाथी जाके दूसरे जानवर को दूध दिया गए तो वो इन्फेक्शन दूसरे में चल जाए। तो हमेशा आप ध्यान दिया जाए कि एक जानवर के जब दुहल जा तो हाथ धो के तब दूसरे जानवर के दुहल जा। और एक काम और कर जाला, जैसे मान लीजिए थनैली हो गए तो सबसे पहले जो बढ़िया थन होला ओके दुहल जाला, और लास्ट में जो खराब थन होला ओके दुहल जाला। तो उसे ये होला कि जो खराब थन रहला ओकर दूध निकाल के फिर जो भी दवा चले ले आपके चलाए पड़ी। एक चीज और देखा जाला कि जब दूध जानवर के बिगड़ेला तो वो ज्यादातर जो है एल्कलाइन हो जाला, क्षारीय हो जाला। ज्यादातर थनैली में दूध क्षारीय हो जाला और जब उबाल जाए तो फट जाए। तो एमे अगर नींबू का प्रयोग आप कर जा, दवा भी यही तरह दिया जाला कि नींबू आप पिलावल जा, जैसे आदमी कहला सोडा पिला दिया जाए तो सोडा से बढ़िया आप नींबू पिलावल जा, तो एक रोकथाम के आपके कारण सही बने। और सबसे बड़ी चीज बा कि जब बियाली कुल तो एक डेढ़ महीना, अक्सर थनैली डेढ़ महीने के अंदर हो जाले, तो आप जो है डेढ़ महीना एक अच्छा प्रिकॉशन कर जा। दूसर का बियाले के पहले कबो कबो जो इन्फेक्शन होला बियाइल नहीं रहली तो थनवा पे लगल रहला, आप जब ओके खोलल जाला जो नहीं कहा जाला कि वो खील निकाल दिया जाए, आप जब खील निकालल जाला ऊपर इन्फेक्शन रहला तो खट दे जब छेद खुले ला तो उसे अंदर चल जाला। एमे एक चीज और कर जाला, जब जानवर दूध खत्म करे लगेला तो ओके कहा जाला ड्राई काऊ ट्रीटमेंट। वो समय का कल जाली अगर पहले से कल गई रही तो ओमे का कल जाए जब दूध सूखे लगेला तो एक ट्यूब लगा के छोड़ दिया जाला, जौने से बियाले पहले तक ओमे पूरा जो है ओकर जो बैक्टीरिया वायरस जो रहला मरल रहला। तो अगर वातावरण से भी थोड़ा बहुत आवेला तो मर जाला। तो कोशिश ही करे चाहे कि लास्ट में जब दूध आप तोड़ल जाता, आ तोड़ल कब जाला, सात महीना जब पूरा हो जाला गाय में तब दूध तोड़ देवे चाहिए। आ होला का कि आदमी तोड़े खातिर का करी, आज दूध लेलस और फिर दो दिन छोड़ देलस, तीन दिन छोड़ देलस, चाहे रूद दो होता, ये नियम ना है। आज आप दुहल गए एक दोनों टाइम दुहाए तो कल एक टाइम करिए, फिर ऐसा करत करत एक दिन छोड़ के करिए, ऐसा करत करत जब दूध अपने आप में से सूख जा ओकरे बाद ट्यूब चढ़ा छोड़ दिया जाए। तो आप देखा जाला कि कबो कबो जानवर बियाइल आ थन फूल गेल इतना तो का तुरंत थोड़े करे अंदर कहीं से घुस गए।
2: श्रोताओं, खेती किसानी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पशुओं में थनैली के लक्षण और बचाव कैसे करें। इस विषय पर बातचीत कर रहे थे डॉक्टर रमाशंकर सिंह, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे

0: न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,40,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित नेपाली कार्यक्रम।

0: अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। स्मारक डाक
1: धेरै वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ। विभागले हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ र छत्तीसगढ़मा असिना पर्ने सम्भावना पनि व्यक्त गरेको छ। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड र तटीय कर्नाटकमा मेघ गर्जन र बिजुली सितै वर्षा हुने सम्भावना छ। पश्चिमी मध्यप्रदेश र तेलंगानामा गर्मीको लहरको स्थितिको अनुमान गरिएको छ। आज हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाइन्दैछ। भारतमा यो दिवस प्रतिवर्ष 30 मईमा मनाइन्छ। यो दिवस भारतको प्रथम हिन्दी समाचारपत्र उदन्त मार्तण्डको प्रकाशनको प्रतीक हो। यसको शुभारम्भ 30 मई 1886 कोलकातादेखि भएको थियो। यस समाचार पत्रको स्थापना र सम्पादन पण्डित जुगल किशोर शुक्लाले गर्नुभएको थियो। उहाँलाई हिन्दी पत्रकारिताको अग्रदूत पनि भनिन्छ। सुन्नुहोस् एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत र इंग्ल्याण्ड बीच 3 म्याचहरूको श्रृंखलाको दोस्रो T20 महिला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट म्याच आज ब्रिस्टलमा खेलिनेछ। यो म्याच साँझ 7 बजेदेखि शुरू हुनेछ। अब अन्तमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले भन्नुभएको छ, भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तरको सतर्कतामा छ र आवश्यकता परेमा अपरेशन सिन्दूर 2.0 लागि तयार छ। म्यानमारका राष्ट्रपति ओ मिन आउलिन भारतको 5 दिने भ्रमणमा बिहारको गया पुग्नुभयो। उहाँले बोधगयामा विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभयो। कर्नाटकमा आज साँझ बेंगलुरुमा कंग्रेस विधानसभा दलको बैठक हुनेछ। यसमा नयाँ नेताको चुनाव गरिनेछ र बिहारमा आँधी वर्षा र चट्याङको भिन्दाभिन्दै घटनामा 7 मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्। यसका साथै समाचार पूरा भयो।
3: अब प्रस्तुत छ समसामयिक समीक्षा।
4: अब प्रस्तुत छ समसामयिक समीक्षा। विषय रहेको छ हिमालयी अर्थतन्त्रले विकसित भारत 2047 अगाडि बढाउनेछ। अनुवादक तथा वाचन सपन सुब्बा। आलेख विदेश सेवा डेक्स एनएसडी आकाशवाणी। केन्द्रीय विज्ञान तथा प्रविधि, पृथ्वी विज्ञान राज्य मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेन्सन, परमाणु ऊर्जा र अन्तरिक्ष राज्यमन्त्री डाक्टर जितेन्द्र सिंहले भन्नुभयो, हिमालय अर्थतन्त्र भारतको भविष्यको आर्थिक विकासमा एक प्रमुख योगदानकर्ता बन्नेछ, किनकि देश विकसित भारत 2047 परिकल्पनातर्फ अघि बढिरहेको छ। मन्त्री जितेन्द्र सिंहले भन्नुभयो, भारतको आर्थिक विकासको अर्को चरण दशकौंदेखि विशेष गरी हिमालय क्षेत्रमा अन्वेषण गरिरहेका क्षेत्र र स्रोतहरूबाट देखा पर्नेछ। सीएसआईआर हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलोजी संस्थान IHBT

0: श्रोता, लोक तथा आधुनिक गीतको सङ्गालो कार्यक्रम गीत संगीत यही समाप्त हुन्छ। अब सुन्नुहुनेछ समाचार।
1: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो, समाचार सारण मंगरबाट सुन्नुहोस्। प्रथममा मुख्य समाचार। म्यानमारका राष्ट्रपति उ मिन औलाइन भारतको 5 दिने भ्रमणका लागि आज बिहारको गया आइपुग्नुभयो। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले भारतीय सेनाहरू उच्च सतर्कतामा रहेको र आवश्यक परे अपरेसन सिन्दुर 2.0 लागि तयार रहेको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रविधि मन्त्री अश्विनी वैष्णवले लिथियम ब्याट्री र स्थायी चुम्बकहरूले धेरै आधुनिक प्रविधिहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले भारतमा चुनाव संविधान, चुनाव कानून र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको पारदर्शी दिशा निर्देशहरू अनुसार सञ्चालन हुने बताउनुभयो। अनि सिङ्गापुर ओपनको सेमी फाइनलमा भारतका मिक्स डबल्स जोडी ध्रुव कपिला र तनिषा कास्ट्रोको जोडीले जापानका साइका होबारा र युइची सिमोगामीको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब समाचार विस्तारमा। म्यानमारका राष्ट्रपति उ मिन औलाइन भारतको 5 दिने भ्रमणका लागि आज बिहारको गया आइपुग्नुभयो।
2: म्यानमारका राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुँचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: यसैबीच राष्ट्रपति यु मिन औलाइन आज नयाँ दिल्ली पुग्नुहुनेछ। उहाँले आज साँझ विदेश मन्त्री डाक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरसँग भेट गर्नुहुनेछ। यस्तै म्यानमारका राष्ट्रपति भोलि म्यानमार भारत व्यापार मञ्चमा भाग लिने सम्भावना छ भने राष्ट्रपतिको सोमबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दुई देशबीचको ऐतिहासिक र सभ्यतागत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति 2 जुनमा व्यापार र उद्योग सम्बन्धी वार्ताका लागि मुम्बईको भ्रमण गर्नुहुनेछ। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले भारतीय सेनाहरू उच्च सतर्कतामा रहेको र आवश्यक परे अपरेसन सिन्दुर 2.0 लागि तयार रहेको बताउनु भएको छ। पुणेको खडकवाला स्थित राष्ट्रिय रक्षा एकाडेमीमा 150 ब्याचको पासिङ आउट परेडलाई सम्बोधन गर्दै

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम 5 बजे सायंकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। श्रोताओं, FM बैंड पर हमारे विविध भारती के प्रसारण जारी रहेंगे। नमस्कार।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम भरा हो लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो।
1: इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी

0: चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है?
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली बदमाश
0: जी
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है,
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी, बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीज़ें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको, सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो। और जो विर्ज खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं।
1: कर रही हैं।
0: और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई
0: अच्छा
1: आपने, तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
0: जी।
1: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
0: जी,
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी, आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी,
1: हाँ।
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
0: अच्छा।
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
0: जी,
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को, और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ, साधना गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
0: क्या
1: है ना। तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस समय आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
0: उतनी बुलंद
1: आवाज। हाँ, बुलंद आवाज थी
0: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो भला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद
1: हाँ,
0: किए हों।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही हैं तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त। बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा,
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत तो दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की हैं उस जोगीरा में, और हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूं।
0: अच्छा, वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। उसमें एक स्टेप है ना थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
0: लाठी के भूत,
1: लाठी के भूत मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने। फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान

0: कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ।
0: हाँ।
1: तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता। पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ, उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा।
1: तो 2-3 चीजें ये सीखे कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है।
0: हाँ।
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
0: जी।
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा हो गया कम हो गया, पर जो चीज़ है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा ले के, तो मुझे नहीं लगता कि वो, पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को, हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
0: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है। हाँ। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
1: हाँ, ऐसा
0: एक
1: तो
0: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
1: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना।
0: हाँ।
1: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
0: जी,
1: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
0: जी,
1: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं, हम अगर सड़क पे खड़े होकर प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
0: जी,
1: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज़ नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ
0: जी।
1: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना, नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ।
0: हाँ, कि जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं।
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ।
0: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
1: अच्छा, ऐसा
0: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो
1: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं,
0: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
1: और बहुत मीठा संगीत है।
0: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ दिल

और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक

0: कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे. तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी. तो वो बड़ा गंदा सा पैच था.
1: अच्छा,
0: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे. तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी. और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं. हाँ, तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है.
1: जी, जी जी
0: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में. और बाकी थोड़ा सा अच्छा सा रोल था. और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है.

0: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
1: जी,
0: तो इसलिए मैंने कभी उन पे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा
1: जी।
0: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
1: नई
0: प्रोडक्शन में
1: जी जी,
0: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है, बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
2: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
0: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
2: अच्छा,
0: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
2: जी,
0: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
2: अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी।
0: हाँ, तो टाइम निकल जाता है, बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
2: जी।
0: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे। हाँ,
2: नहीं वैसे आप बहुत हॉट है, शॉल की जरूरत नहीं तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
0: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
2: जी,
0: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी
2: जी,
0: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
2: जी,
0: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह, हाँ तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
2: नीचे का जी।
0: लेकिन वो ले गए
2: जी,
0: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई, मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
2: वही
0: तो
2: सेम फिल्म,
0: हाँ सेम फिल्म
2: ओ,
0: लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी जुड़ना ऐसी फिल्म
2: जी,
0: से
2: जी।
0: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
2: जी,
0: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
2: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना। तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद,
2: हाँ, जी जी उसके बाद ही,
0: हाँ तो मस्ती में की बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
2: जी,
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
2: अच्छा,
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
2: जी,
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो वो फिल्म की। उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
2: हाँ,
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब
2: जी, जी।
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी
2: जी, जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
2: बहुत
0: है
2: अच्छी,
0: हाँ। तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब,
2: हाँ,
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
2: जी,
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
2: अच्छा,
0: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
2: मिलके काम कर, हाँ, पारिवारिक तरीके, हाँ, से काम, हाँ, कर रहे हैं।
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल।

0: तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है, तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हैं, हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे।
1: हाँ।
0: कि ऐसा ही करना है। और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी।
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा। मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है। तो मैंने कहा नहीं करूंगी। तो ये बिहार विहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है। तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम। हाँ। और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ। और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने। तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले, मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने। इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उस लिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जा, इनको इतना गुस्सा है। बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर।
1: हाँ।
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा।
0: फिर मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए। हाँ। थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी थी।
0: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी।

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं, यूपी की भोजपुरी फिल्म में, उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो
1: है,
0: वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे,
0: जी।
1: सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए।
0: हाँ।
1: तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो
0: जी
1: जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई वो,
0: जी
1: जो कि ब्लॉकबस्टर,
0: जी
1: आज
0: ब्लॉक
1: भी ब्लॉक
0: जी
1: बस्टर है।
0: जी जी
1: तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से,
0: जी
1: गंगा जैसन पावन पिरितिया हमार।
0: अच्छा
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको।
0: इतना लाइटली तो नहीं
1: बहुत
0: लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी
0: जी जी
1: लेकिन
0: बहुत प्यारी है,
1: हाँ
0: बहुत
1: वो
0: अच्छी फिल्म
1: हाँ
0: जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी
1: बिल्कुल भी
0: आपको।
1: नहीं। मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
0: मतलब आप वो चाट और लस्सी
1: वो
0: खाते पीते
1: खाते
0: बड़ी
1: पीते
0: हुई
1: हाँ,
0: हैं जी।
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। सिर्फ
0: अच्छा
1: मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने
0: अच्छा
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे ये
0: सरदार
1: हाँ।
0: खड़े हैं और
1: तो हमारा
0: भोजपुरी बोल रहे
1: पंजाबी
0: हैं।
1: एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी,
0: जी
1: हाँ ये काफी फर्क है।
0: जी
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए, अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या,
0: अच्छा
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे
1: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते ही हैं,
0: जी।
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी, और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था, चंदन चंदन ऐसा,
0: बहुत
1: तो
0: अच्छा।
1: मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है गाना।
0: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इस गीत
1: हाँ
0: के?
1: इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
0: रविंद्र जैन वहां पे
1: हाँ
0: उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे,
1: हाँ
0: गाया जा
1: रवि
0: रहा
1: जी
0: होगा,
1: हाँ,
0: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
1: बहुत
0: समय?
1: अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा अगर आप
0: जी बहुत
1: ये
0: खूबसूरत गीत
1: हाँ,
0: है।
1: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे,
0: जी
1: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
0: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो,
1: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था, उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने
1: में, और सुना रहे थे ये पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, है ना
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकेंड में
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार,
1: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो उनसे
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहे क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए, जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी
1: हाँ, क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और
0: क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो, आनंद ही अलग आता होगा,
1: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है,
0: अच्छा
1: तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई, अल्लड़पन कहते ना
0: ये, कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई बचपन से।
1: ये बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं, और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे घूमते?
1: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, कि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी, तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
0: अच्छा,
1: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
0: अरे वाह,
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी, तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
0: तो यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों
1: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
0: जी,
1: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहे
0: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है, तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय की जगत में है?
1: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
0: अच्छा,
1: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
0: जी।
1: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं
0: जी।
1: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
0: जी,
1: अनुपम जी ने,
0: बहुत बढ़िया।
1: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
0: हाँ, तो उस समय वो चल,
1: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
0: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
1: नहीं, मैं करती भी नहीं, क्योंकि
0: मेहनत करो अपनी,
1: हाँ, अपनी मेहनत करो,
0: ये बहुत अच्छी बात है।
1: क्योंकि अपने मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
0: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है तो क्या आप करेंगी?
1: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30
0: जी,
1: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली

0: के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%।
1: हाँ
0: अब देखते हैं क्या होता है।
1: जी बिल्कुल होगा।

0: भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ,
1: ऊर्जा सकारात्मक।
0: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
1: हाँ,
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊँ या मर जाऊँ।
1: अरे
0: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज़ों में कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था।
1: क्या बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम
0: मैं
1: भी सुन लें।
0: कोशिश करती हूँ जी। चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है
1: जी।
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है
1: जी।
0: उनका ही गाना गा देती हूँ
1: जी।
0: देखो पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की,

और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश

0: अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं
0: जी।
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ये
1: ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं,
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं
0: जी।
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई
0: जी।
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि हाँ। आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है।
0: हाँ।
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके। अच्छा। और साड़ियां, वीव्स वगैरह, मैं चाहती सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी ये पहेली
0: जी,
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। अच्छा। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है।
0: अरे वाह।
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब देखें।
0: फिल्म है कैसी है पहेली।
1: कैसी है पहेली,
0: जरूर से हम सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है। तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

नमस्कार, मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री DK कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण निवेश योजना SIPO को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये मंजूरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी NSC बैठक के दौरान दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची शिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: किसे?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पुलिस?
4: मिस सीमा
6: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
6: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए, आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
6: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1 लाख दो, बच जाओगे।
6: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
6: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
9: हेलो मम्मा।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
11: आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में और आज हैं आप शिवलता के साथ। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। दोस्तों, हमें अपने पद से या कद से बड़े होने का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारा बड़ा होना सार्थक तभी है जब हम किसी और के काम आ सकें। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपना स्वभाव विनम्र रखना चाहिए। दोस्तों, व्यायाम और युवा आज के समय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। युवा देश का भविष्य होते हैं और उनका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। युवावस्था जीवन का सबसे ऊर्जावान चरण माना जाता है। इस उम्र में बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शक्ति होती है। हालांकि इस शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब शरीर और मस्तिष्क दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हों। आज की आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में युवाओं के लिए व्यायाम सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। आज का युवा अपना अधिकांश समय मोबाइल, कंप्यूटर और कुर्सी पर बैठकर बिता देते हैं। इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण युवा कम उम्र में ही मोटापे, तनाव और अन्य बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। व्यायाम युवाओं को इन समस्याओं से बचाने का एकमात्र प्रभावी साधन होता है। व्यायाम के मुख्य लाभ की बात करें तो नियमित व्यायाम से मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत रहती हैं। व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है जो तनाव और डिप्रेशन को कम करता है। इससे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है जिससे पढ़ाई और दूसरे काम में फोकस भी बढ़ता है। एक स्वस्थ और सुडौल शरीर युवाओं में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जो युवा खेलकूद या जिम से जुड़ते हैं वो अक्सर नशीले पदार्थों और दूसरे व्यसनों से दूर रहते हैं। व्यायाम का मतलब सिर्फ जिम जाना ही नहीं होता बल्कि युवा अपनी पसंद के अनुसार कई गतिविधियाँ चुन सकते हैं। योग और प्राणायाम मानसिक शांति और लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं। आप कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं जिससे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आप कुछ नया भी सीख सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर भारत या किसी भी देश के युवाओं को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना चाहिए। युवा वर्ग को आलस का त्याग कर हर रोज कम से कम 30 मिनट या एक घंटे व्यायाम के लिए ज़रूर निकालने चाहिए। दोस्तों, शारीरिक रूप से सक्षम युवा ही एक सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम बातें करेंगे और भी, उसके पहले हम सुनेंगे ये गीत।

दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई रुचि अवश्य होती है जो हमें खाली समय का सही उपयोग करना सिखाती है। ऐसी ही एक रुचि हो सकती है पेपर मैशे। ये एक ऐसी रचनात्मक विधा है जिसमें रद्दी कागज़ों और बेकार चीज़ों का उपयोग करके बेहद खूबसूरत, मजबूत और कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कला से आप अपनी कल्पनाओं को जीवंत रूप देने का अवसर देते हैं। दोस्तों, पेपर मैशे एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब होता है चबाया हुआ कागज़ या कागज़ की लुगदी। इस कला में पुराने अखबारों, कॉपियों के पन्नों या गत्तों को पानी में भिगोकर, कूटकर और उसमें गोंद या मुल्तानी मिट्टी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है। दोस्तों, भारत में कश्मीर और बिहार में ये कला बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ इससे घरेलू बर्तन, बक्से और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। पेपर मैशे की कला धैर्य और रचनात्मकता का खेल है। इसकी प्रक्रिया में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे लुगदी बनाना। सबसे पहले रद्दी कागज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर 2-3 दिनों के लिए पानी में भिगोया जाता है। इसके बाद भीगे हुए कागज़ को कूटकर या पीसकर बारीक किया जाता है। फिर इसमें मेथी का पाउडर और गोंद मिलाया जाता है। फिर इस तैयार मिश्रण को किसी सांचे में डालकर या हाथ से मनचाहा आकार दिया जाता है। आकार देने के बाद इसे धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। सूखने के बाद इस पर आकर्षक रंगों से पेंटिंग और नक्काशी की जाती है। दोस्तों, ये कला आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती है। ये कला वेस्ट टू बेस्ट का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये रद्दी कागज़ों को रिसाइकल करने का एक बेहतरीन विकल्प है। पेपर मैशे की चीज़ों को सूखने और उन पर बारीक काम करने में समय लगता है, जिससे आपके अंदर धैर्य भी विकसित हो सकता है। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में जहां लोग अपना खाली समय मोबाइल पर बिताते हैं, वहीं पेपर मैशे जैसी पारंपरिक कला से जुड़कर आप एक गर्व की अनुभूति कर सकते हैं। इसे रुचि की तरह विकसित करके घर को सुंदर हाथ से बनी चीज़ों से सजाया जा सकता है और भविष्य में इस कला को और बड़े स्तर पर ले जाकर पारंपरिक हस्तशिल्प कला को जीवंत किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

दोस्तों, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये समाज को जागरूक करने और सच को सामने लाने का एक सशक्त माध्यम है। आज के डिजिटल युग में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं बहुत व्यापक और आकर्षक हो गई हैं। ये क्षेत्र केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक जरिया बन सकता है। बदलते समय के साथ पत्रकारिता का दायरा बहुत बढ़ चुका है। युवा अपने रुचि के अनुसार इस क्षेत्र में करियर चुन सकते हैं। बात करें अगर प्रिंटिंग मीडिया की, तो इसके अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं, जहां रिपोर्टर, सब एडिटर और फीचर राइटर के रूप में काम किया जा सकता है। ब्रॉडकास्ट मीडिया में टेलीविजन और रेडियो शामिल होते हैं। यहाँ एंकर, न्यूज रीडर, वीडियो जर्नलिस्ट और प्रोड्यूसर की भूमिकाएं होती हैं। वेब पत्रकारिता यानी डिजिटल मीडिया वर्तमान समय में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। न्यूज़ पोर्टल्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पॉडकास्ट के आने से डिजिटल पत्रकारों की मांग बहुत बढ़ गई है। फोटो जर्नलिज्म में तस्वीरों के माध्यम से समाचार या कहानी को बयां किया जाता है, तो जिन युवाओं की इसमें रुचि है, वो इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करना होता है। इसके अलावा एक सफल पत्रकार बनने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, भाषा पर अच्छी पकड़ और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर सच को समाज के सामने लाने की क्षमता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

दोस्तों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है हमारी प्रश्नोत्तरी का। तो आज का सवाल पूछने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे कल के पूछे गए सवाल का सही जवाब। दोस्तों, हमारा कल का सवाल था, नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही जवाब है, नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम बालवाणी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: लैका लोग जय हिंद।
4: भैया नारा लगल अपन बैठकी शुरू भइल और अपन लैका लोग भी अपने कार्यक्रम के अगोरल है कि आज उनके कौन नया जानकारी मिली।
3: हाँ भैया देखा, लैका लोगन भी पढ़ाई लिखाई से एक तरह से फुर्सत पा चुकल बाटे। काहे से समय भैया बा स्कूल बंद।
4: हाँ भैया, पढ़ाई लिखाई से फुर्सत तो पौले बाटन, लेकिन लैका लोग भी आजकल के बहुत जागरूक हो गए बाटन। वो लोग अगला जो उनकर कक्षा बा मतलब तैयारी वो करे लग जाए कि ओके पहले ही से हम तैयारी शुरू कर।
3: बस छुट्टी इतने बा कि घर से स्कूल गई ले के बाकी काम और पढ़ाई और अपन तैयारी निरंतर जारी रहला लैका लोगन के।
4: लेकिन भैया छुट्टी के इंतजार तो हर लैका लोगन के रहला कि अब की छुट्टी हुई तो हमन कहीं कहीं घूमे चलल जाए। पहले छुट्टी होते रहे तो लैका लोग नानी यहाँ निकल जाए, चाहे मामा मौसी यहाँ निकल गए, फुआ यहाँ निकल गए, कुछ दिन समय बितावत रहना खेला कूदा। और आपका लैका लोग भी जौन बा पहले से अपन एक ठो बना लेता था रूपरेखा।
3: हाँ तैयारी पहले से कर लेने के, अबकी छुट्टी में कहाँ चलेगा,
4: कहाँ घूमे जाएगा, कैसे का करेगा, कैसे छुट्टी बिताएगा,
3: और अपने रिजल्ट के अनुसार भी अपने अनुभव अभिभावक लोगन से भी लोग वादा करा लेने तय कर लेने की अबकी हमारा रिजल्ट का आया ही तो कहाँ घूमेबा कहाँ ले चले के बा।
4: हाँ आजकल भैया देखल ना, अगर लैका लोगन के घूमले के जौन बा अधिकतर कह के पर्वतीय स्थल जौन बा जौन भी पर्यटन स्थल बा जहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ बा पर्वत बा वहाँ गईले के जो ज़्यादा जौन बा इच्छुक रहे।
3: हाँ भैया ऐसे रहने इच्छुक कि ऐसे में देखें यहाँ पड़ती है गर्मी। हाँ, और हाँ, पहाड़ी क्षेत्र जौन होला वहाँ रहला ठंडक। हाँ, और पहाड़ी क्षेत्र जौन होला वो सामान्य धरातल के ऊँचाई से काफ़ी ऊँचाई पर बसल होला और वहाँ के बहुत ही हरा भरा क्षेत्र होला, बड़ा आकर्षण होला। और पहाड़ी के जो चोटी होला वह पे बर्फ देखे के मिलेला लैका लोगन के, जैसे पुरहर मनमनसाइन भी होला और मनमनसाइन के साथे साथे वो ज्ञानवर्धक भी होला। भैया वो पहाड़ी क्षेत्र के बारे में जहाँ भी पर्यटन करे लैका लोग जो हैं ओकरे बारे में विस्तृत जानकारी भी मिली। भैया
4: भैया देखिए अब इस समय जैसे कि बात कर जाए अधिकतर कह के उत्तराखंड लोग निकल जाता था, जैसे मसूरी हो गई, नैनीताल हो गई, ऋषिकेश हो गई, चाहे हिमाचल प्रदेश में जैसे मनाली शिमला और तमाम ऐसा जगह बा जौन कि अपने ठंडा मौसम के साथे साथे प्राकृतिक सुंदरता और जौन घाटी बाटी इनों का ट्रैकिंग वहाँ होला और शांत, सबसे बड़ा तो शांत वातावरण वहाँ है। इतना शांत वातावरण कि वहाँ से फिर अइले का मन नहीं करला।
3: वहाँ के वातावरण शांत भी होला, शुद्ध भी होला, वहाँ कोनो तरह के प्रदूषण नहीं रहेला और अच्छे माहौल में वहाँ रहले के पुरहर अवसर मिलेला और वहाँ रहले में पूरा मन लगेला। भैया
4: हाँ भैया सही कहनी आप, तो लैका लोग जौन भी अपन घूमे गए हैं जाए वाला बात ने वो लोग मतलब घूमले के साथे साथे अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दियल करी। ओके जौन बा अपने समय सारणी में जौन बा पढ़ाई के भी ध्यान दियल
3: और जौने भी जगह घूमे जई हैं वहाँ का ऐतिहासिक महत्व और भी ओकर जोन भी महत्व है ओकरे बारे में विस्तृत जानकारी जरूर ली है। हाँ, यहाँ से ओकरे बारे में पढ़ के जई हैं और वहाँ ओके तलसी हैं, खोजी हैं और ओकर साक्षात दर्शन करी हैं, साक्षात्कार करी हैं उसे। भैया
4: हाँ भैया देखिए लैका लोगों से बतगीत होत रही लेकिन कुछ ही लोगों के मन मनसाइन हो जाए। लैका लोग सुने उठो गीत

0: महत्व रखते हैं बल्कि आय का जरिया भी बन जाते हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में इन पौधों का अत्यधिक महत्व है। भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण व महाभारत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में इनके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। प्रसिद्ध विद्वान चरक ने तो हर एक प्रकार के पौधों का विश्लेषण करके कई अनमोल किताबों की रचना कर डाली है, जिसका प्रयोग आजकल मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है। प्राचीन समय से ही तमाम तरह के फूलों वाले पौधों का प्रयोग हम घर बगीचे में सजावट के रूप में करते आ रहे हैं। इन पौधों में मौजूद विशेष सुगंध का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। कुछ उपयोगिताओं की चर्चा हम यहाँ करेंगे। इनमें से एक पौधा है लेमन ग्रास। इसका उपयोग हम कीड़े मकोड़ों, मच्छरों को भगाने के लिए कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से ये इंसेक्ट रिपेलेंट का कार्य करता है। लेमन ग्रास के पत्तियाँ फूलों को सूरजमुखी के तेल के साथ उबालकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जो मॉस्किटो यानी मच्छरों को भगाने के लिए एक प्रभावकारी रूप से प्रयोग में लाया जाता है। इसी तरह तुलसी के जो पुष्प होते हैं उनको तोड़कर घर के अंदर रखने से भी मच्छरों की संख्या में कमी देखी जा सकती है। कपड़ों में हमेशा अच्छी गंध के लिए अगर हम कपड़ों के साथ तेजपत्ता की कुछ पत्तियों को रख दें तो कपड़े सुगंधित बने रहते हैं। कैमोमिला एक प्लांट है, इसकी पत्तियों को सुखाकर चाय की पत्ती के साथ मिलाकर पीने से नींद कम आने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। गेंदा, गुलाब, गुड़हल, कार्नेशन, कनेर, चंपा, कुसुम, गंधराज, हरसिंगार जैसे फूलों को तोड़कर एयर टाइट पैकेट में बंद कर रखने से इनका सुगंध बना रहता है, और जिसे हम अपने ड्राइंग रूम में रखकर वातावरण को सुगंधित बना सकते हैं। सुगंधित पौधे यानी कि एरोमेटिक प्लांट तमाम तरह के उत्पाद जैसे फ्लेवर्स, मसाले, हर्बल सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, सुगंधित साबुन, बालों के तेल बनाने में कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। और जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, इन उत्पादों की मांग बढ़ने से सुगंधित पौधों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। न केवल भारत वरन फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, तुर्की, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इन पौधों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर औषधि के रूप में सुगंधित पौधों के प्रयोग की बात करें तो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में इन पौधों का बहुतायत में प्रयोग होता रहा है। हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथ में इन्हीं पौधों का प्रयोग होता है। वर्तमान में देश में लगभग 9000 स्थानीय पौधे रिकॉर्ड हैं जिनका औषधीय महत्व है, और जिनमें 1500 से 2000 सगंध पौधे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सुगंध वाले पौधे न सिर्फ सजावट के रूप में बल्कि औषधीय महत्व के रूप में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। एरोमेटिक पौधों में मौजूद इसेंशियल ऑयल औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, मसालों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये पौधे स्वास्थ्य वर्धन के साथ साथ आर्थिक समृद्धि में भी बखूबी योगदान करते हैं। आज बदलते वातावरणीय परिस्थितियों में जहां भूमंडलीय उष्णता, जलवायु परिवर्तन के कारण तमाम जीव जातियों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हुआ है, ऐसे में हमें आवश्यकता है इस तरह के आर्थिक महत्व वाले पौधों का संरक्षण किया जाए ताकि हमारा देश इनकी जैव विविधता में संपन्न बना रहे।
1: बहुत निम्न जानकारी दी है अनुप कुमार द्विवेदी जी,
2: एक खातिर इनके दिल से धन्यवाद।
1: हाँ भैया, लेकिन सुखला सुखला नाइट गीत के माध्यम से।

0: भैया बहुत बढ़िया, मनमोहन सिंह भैया लइका लोगन के गीत के माध्यम से जो ना खर्च नीला धन्यवाद
1: भैया
0: एक।
1: देखा, हमन के कार्यक्रम एक समय सीमा में बनल है
0: हाँ
1: और आज के कार्यक्रम के समय पूरा हो गए, तब लइका लोगन से विदा ले के समय आयल, तो लिहल जाए विदा लइका
0: लइका लोग
1: लोगन।
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

अभी ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बालवाड़ी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से क्रमशः भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारण के साथ हम विकास राय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में 19 करोड़ रुपया का लागत से बनल नौसेना शौर्य संग्रहालय का दूसरा फेरा नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण कैलें। ए मौका पर आयोजित समारोह के संबोधित करत रक्षा मंत्री कहलें कि ई वाटिका कौनो साधारण पार्क नइखे, बलुक सबके खातिर प्रेरणा का जगह हो।
1: आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। यह सारी चीजें मैं मानता हूँ बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था, विकास और निवेश का सराहना करत एकर श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगुवाई के दहलें। ए मौका पर मुख्यमंत्री सज्जो नागरिक लोगिन का आह्वान कैलें कि उ सैनिक लोगिन के हमेशा सम्मान दें। मुख्यमंत्री कहलें,
2: अब भारत का सैनिक माइनस डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करता है, या रेगिस्तान में झुलसती हुई इस गर्मी में भारत की सीमा की रक्षा करता है, या समुद्र की उन लहरों का मुकाबला करते हुए भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोता है।
0: नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण समारोह के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को संबोधित कैलें। ए मौका पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, ब्रजलाल आ लखनऊ का महापौर सुषमा खरकवाल के साथे कई गो जनप्रतिनिधि और नौसेना का अधिकारी मौजूद रहलें। लखनऊ का सीजी सिटी में विकसित कैल गेल नौसेना शौर्य वाटिका में स्थापित रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती पर्यटक लोगिन बदे खास आकर्षण हो। सतही ऐजा देखावल गेल सज्जो हथियार असली हवें। सरकार पश्चिम एशिया संघर्ष के नाते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के देखी के सार्वजनिक क्षेत्र का तेल विपणन कंपनियन के 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करे का निर्देश दिले हवें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा बतौले हैं कि सरकार रणनीतिक भंडारण के जरिया से ईंधन सुरक्षा मजबूत करे और बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करे बदे कार कह रही हो। ओहर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा कहले हवें कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गई हो। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा बिहने दुई पाली में आयोजित हुई। पहली पाली सवेरे 9 बजे से दोपहरिया 12 बजे ले और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से संझा 5 बजे ले चली। परीक्षा बदे प्रदेश के 72 जिलन में 1,011 केंद्र बनावल गेल हो, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दी हैं। परीक्षा केंद्रन पर सुरक्षा और निगरानी का खास इंतजाम कैल जा रहा हो। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करे वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के हिसाब से परीक्षा के पुरहर सुचिता और पारदर्शिता के साथ पूरा करावे बदे हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनावल गेल हो। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस हो। बरिस 1826 में अजुए के दिन ने हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मारतंड प्रकाशित भइल रहे। एगो रिपोर्ट।
3: 200 वर्ष पूर्व जब देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में उदंत मारतंड समाचार पत्र के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी थी। उदंत मारतंड से शुरू हुआ पत्रकारिता का यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण औजार बना। बदलाव के दौर से गुजरती हुई हिंदी पत्रकारिता समाचार पत्रों के साथ ही रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जनमानस के बीच मजबूत पहचान बना चुकी है। समाचार कक्ष से रितेश।
0: हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौका पर आज प्रदेश के कई जिलन में पत्रकार संगठनन की ओर से गोष्ठियन का आयोजन कैके पत्रकारिता का इतिहास, वर्तमान और भविष्य का संभावना पर चर्चा कैल गेल। प्रदेश में बीतल दो दिन के दौरान तेज ब्यार चलने और बरखा भइले से तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस लेकर गिरावट दर्ज कल गया हो। अजवो कई जिलन में बादल छवले रहल, कुछ जिलन में हल्का है बरखो भइल। मौसम विभाग प्रदेश के कई इलाकन में बिहने तेज ब्यारी के बीचे बरखा

पहिले का अलर्ट जारी कैलस। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नौसेना शौर्य संग्रहालय के दूसरे चरण नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये वाटिका कोई साधारण पार्क नहीं बल्कि सभी के लिए प्रेरणा स्थल है।
1: आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। यह सारी चीजें मैं मानता हूँ बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था, विकास और निवेश की सराहना करते हुए इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों का आह्वान किया कि वे सैनिकों को सदैव सम्मान दें। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: जब भारत का सैनिक माइनस डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करता है या रेगिस्तान में झुलसती हुई इस गर्मी में भारत की सीमा की रक्षा करता है या समुद्र की उन लहरों का मुकाबला करते हुए भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोता है।
0: नौसेना शौर्य वाटिका के लोकार्पण समारोह को दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, ब्रजलाल और लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और नौसेना के अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ की सीजी सिटी में विकसित की गई नौसेना शौर्य वाटिका में स्थापित रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। साथ ही यहाँ प्रदर्शित सभी हथियार वास्तविक हैं। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उधर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1,011 केंद्र बनाए गए हैं जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
3: 200 वर्ष पूर्व जब देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में उदंत मार्तंड समाचार पत्र के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी थी। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ पत्रकारिता का यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण औजार बना। बदलाव के दौर से गुजरती हुई हिंदी पत्रकारिता समाचार पत्रों के साथ ही रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जनमानस के बीच मजबूत पहचान बना चुकी है। समाचार कक्ष से रितेश।
0: हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में पत्रकार संगठनों की तरफ से गोष्ठियों का आयोजन कर पत्रकारिता के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई। प्रदेश में बीते 2 दिनों के दौरान तेज हवाओं के चलने और बारिश होने से तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। आज भी कई जिलों में बादल छाए रहे, कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल तेज हवाओं के बीच बारिश होने का अलर्ट जारी किया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: जय जवान
1: जय
0: जय
1: किसान।
0: किसान। भैया देखो, नारा लगल, नारा के साथे बैठकी शुरू भइल और अपन किसान भाई लोग भी अपने कार्यक्रम के सुने खातिर तैयार बैठल हुई हैं।
1: हाँ भैया,
0: कहे से उनके उम्मीद रहला कि कार्यक्रम के माध्यम से कुछ नई रोचक जानकारी मिली, जोने से अपने कृषि के वो उन्नत रूप दे पई हैं, अच्छा पैदावार ले पई हैं और अपने खेती बाड़ी के तौर तरीका में कुछ संशोधन कई के ओके अच्छा बना पई हैं। भैया
1: हाँ भैया, देखी तरह तरह का फसल भी अपन पंच भाई लोग बोल रहे हैं, चाहे गेहूँ हो गए, धान हो गए, लेकिन अलावा खेती में अगर सब्जी में बात करें, आलू का अधिकतर कई के लोग पैदावार कर रहे हैं। और आलू देखा जाए तो एक तरह से सब्जी में राजा मानल जाला
0: हम समझन था
1: कि
0: आपका इरादा जोन बा, आज जोन है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस भी है और वही पे
1: हाँ
0: किसान भाई लोगन से बात कैले के आपके मन बा।
1: हाँ भैया, बिल्कुल आप सही कहनी। और ये हर साल जौन बा 30 मई के मनावल जाला। एकर उद्देश्य यह बा कि आलू के पौष्टिक और आर्थिक महत्व के उजागर कैल जा और एक उत्पादन में लगल छोट और पारिवारिक किसान के योगदान और सम्मान कैल जा।
0: आलू के उपयोगिता के बारे में भी लोगन के जागरूक कल जाए। आलू एक ऐसा सब्जी है जो इनकी 12 महीना उपयोग में आवला और बहुत काफ़ी मामले में प्रयोग सब्जी के साथ
1: वही सब्जी
0: साथ
1: के साथ
0: कई तरह के भी एकर
1: चिप्स एकर तमाम तरह के बनला, मतलब आलू से बढ़िया लोगन अगर उत्पादन करते हैं तो उसे बढ़िया लाभ होला पंच भाई लोगन के।
0: और ओकर अगर रख रखाव सही कैल जा, ढंग से रखल जा, तो उसे अच्छा आमदनी भी कमाइल जा सकेला। भैया
1: हाँ भैया, और देखा जाए तो आलू दुनिया के चौथा सबसे बड़ा खाद्य फसल हवे और भारत विश्व में आलू उत्पादन में दूसरका और उत्तर प्रदेश जो पहला स्थान पे बा।
0: हाँ तो ए भैया, आलू के खेती कई के ओकर ठीक से रख रखाव कई के अच्छा नकदी लाभ कमाइल जा सकल। और आलू से बनने वाला जो प्रोडक्ट बाटे चिप्स वगैरह, वो
1: हाँ
0: आज
1: हाँ
0: के लड़का लोगन के भी और समाज में भी ओके बहुत पसंद भी कैल जला वाला, और चटपटा चीज भी कटलेट वगैरह भी आलू से ही बनेला। भैया
1: भैया, आलू में विटामिन सी, पोटेशियम और ऊर्जा के बेहतरीन स्रोत बा। ई देखल जाए कि एक तरह से भूखमरी से लड़ले और खाद्य सुरक्षा के सुनिश्चित के लिए बहुत अहम भूमिका निभावला।
0: भैया देखो, बातचीत हमन के आगे जारी रही, लेकिन उससे पहले अपने किसान भाई लोगन के सुनवा देवल जाए गो गीत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
4: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
8: हाँ भैया, संदेश से पहले आप लोगों का बहुत बढ़िया मनमन साइन भेल मोहम्मद खलील और साथी लोगों की आवाज़ में। भैया देखिए, इसमें वातावरण प्रदूषित हो रहा बा, ऐसने में अपने पंच भाई लोगन जन बा प्रदूषण मुक्त खेती कैसे करें, यही विषय पे हम आप लोगों के बातचीत सुनवावत हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी जानकारी देते हैं, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी जानकारी लेते हैं, पंच भाई सुना और लाभ उठावें।
9: डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, आप कृषि विज्ञान केंद्र बसुली महाराजगंज से आए हैं। डॉक्टर साहब, आपके अपने बैठकी में सबसे पहले स्वागत बा। डॉक्टर साहब, देखल जाता हर जगह ही चर्चा सुने के मिलाला कि भाई आजकल अपन हवा पानी धरती सब कुछ प्रदूषित हो गए बा, और यह प्रदूषण में अगर देखल जा तो भाई अपन खेती के जो तरीका बा वह तरीका के भी पंच भाई लोग रासायनिक बना दिल बटे, यह नाते से वहाँ भी प्रदूषण फैलत जाता। डॉक्टर साहब, आपके समझ में का बा कि पर्यावरण का हवा और एक प्रदूषित भैले से का हानि बा, ये विषय पर जानकारी दी।
10: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि ये पर्यावरण क्या है, प्रदूषण क्या है। किसान भाई, पर्यावरण, हम जो जीव हैं इसके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ घूमते हैं, जैसे आकाश, नभ, खेती बाड़ी, जो भी हमारे से ये जो टम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द में हैं, वह हमारे वातावरण का अंग है, यही पर्यावरण है।
9: मतलब जौन तापमान बा, जौन भी आर्द्रता पावल जाले जमीनी में, ये सब अपने पर्यावरण के अंग है।
10: हाँ।
9: और यही पर्यावरण में अपने पंच भाई लोगन के खेती भी करे के बा।
10: जी जी।
9: तो ये प्रदूषण मुक्त खेती कैसे कहल जा, हम चाहती कि ये विषय पर आप गह जानकारी अपने पंच भाई लोगन के दी।
10: देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आप कहल गेल कि प्रदूषण मुक्त खेती, यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो आजकल उनका टारगेट है, लक्ष्य है कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगुना कर देंगे, तो उसके लिए पूरे देश के वैज्ञानिक और शोध संस्थाएं जितने भी हैं, विश्वविद्यालय सभी लगे हैं कि हम किसानों की आय को नई तकनीकी के माध्यम से
9: बढ़ा दें।
10: लेकिन उसके साथ साथ हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी वाली चीज़ हो।
9: माने केवल उत्पादन भर न बढ़े बल्कि गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन।
10: हाँ, और उस गुणवत्ता युक्त उत्पादन में हमको अपने चीज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अपने खेत का, अपने वातावरण को प्रदूषण से मुक्त, मतलब जो चीज़ हमारे जो भगवान ने नेचर ने दिया है उसको हम दूषित न करें, वही प्रदूषण। जैसे हम खेती के उसमें आते हैं तो खेती में हमारे किसान भाई अपनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए न कि नई विधियों को अपना करके वह रासायनिक खादों को, रासायनिक

0: दवाइयों को अकूत प्रयोग करते हैं,
1: माने बहुत मात्रा में प्रयोग कैला से हानि बा और उसे प्रदूषण फैलाला।
0: हाँ, उसे प्रदूषण फैलने का तरीका यह है कि जब हम खाद ज्यादा देंगे, रासायनिक खाद खास तौर से, तो उस वह हमारे रासायनिक खादों में एक क्वालिटी होती है कि वह एक या दो या तीन तत्वों के लिए ही बनी होती है, जो कि हमारे पौधों को 16 से 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो चीज हमारी खाली खाद ही पूरी कर सकती है। खाद में 16 पोषक तत्व जो पौधों को उपलब्ध है,
1: माने खाद का मतलब कहले से आपके ही बात की कंपोस्ट वाली खाद।
0: हाँ, कंपोस्ट हो, बर्मी हो, खाद का मतलब किसान भाई, और उर्वरक का मतलब आपको हम बहुत मतलब आपकी भाषा में उसका जवाब दे दें कि खाद वह चीज है जो कि हम खा कर दी जाती है, मतलब जो हमारा जानवर खाने के बाद जो उसका मलमूत्र है,
1: गोबर हो,
0: हाँ, गोबर है, या जो हमारे घर में खेत किचन में जो चीज़ें सब्जी के सड़ी गली चीज़ें हैं उनको हम नडप में या बर्मी में डाल के उसको हम खाद बना देते हैं। यह जो है यह हमारी जमीन
1: खाद
0: है, और ये हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। और उर्वरक में अंतर यह है, उर्वरक फैक्ट्री में बनती है और वह 2 या 3 पोषक तत्व का रहता है, और जो कि केमिकल है और जब जमीन में जाता है तो जमीन के जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जो जिनको खाद की जरूरत होती है, कार्बन की जरूरत होती है, वह धीरे धीरे उसको मरने लगते हैं और हमारी खेती बंजर और ऊसर की तरफ बढ़ने लगती है।
1: मैंने खेती में अपने जौन जौन तत्व चाहिए, ये खाद के ज्यादा जो उर्वरक आप बतैली हैं, जो फैक्ट्री से निकल के रासायनिक खाद आवेले, ऐसे ई हानि होबे कराला कि भाई जो हमें जीव जंतु बाटे उ तो समाप्त हो
0: जाए, लाभदायक जीव,
1: लेकिन खेती के जो प्रकृति बा उ प्रकृति पर भी असर,
0: प्रकृति उसका नेचर बदल जाता है कि जो उपजाऊ जमीन है यदि हम हमेशा प्रयोग करते रहेंगे तो वह ऊसर की तरफ बढ़ेगी और उत्पादन एक कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एक फिक्स उत्पादन ही मिलेगा। और हम जैविक डालेंगे तो जैविक से हमारी जमीन भी स्वस्थ रहेगी, मृदा भी स्वस्थ रहेगी और वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। इसी क्रम में आप रासायनिक दवाई ले लीजिए, रासायनिक दवाइयों में भी जैविक दवाइयां हैं और रासायनिक हैं, तो जैविक दवाइयों का प्रयोग करने से वह लागत भी कम लगती है और उसमें भारत सरकार की तरफ से छूट भी है, और आज रासायनिक में डालने से वह हमारे पौधे पर पड़ेगी, पौधे मान लीजिए सब्जी के काश्तकार हैं हर दूसरे तीसरे दिन दवाई डालते हैं क्योंकि वो कैश क्रॉप है उनकी, और वह ले जाएंगे बाजार में बेचेंगे, और बाजार में बेचने के बाद वो जो भी खाएगा उसके शरीर में जा करके वो डिपॉजिट होगी और तरह तरह की बीमारियाँ।
1: अगर रासायनिक खाद सब्जी वाली फसल लगैले बाटे पंच भाई लोग या कोनो फलदार पेड़ लगैले हमें वहाँ पर अगर प्रयोग कैल जाता तो वो जो उन उत्पादन मिली, फल मिली या सब्जी मिला, तो वो सब्जी भी प्रदूषित हो जाता।
0: हाँ, हाँ।
1: और अगर वो के खाई जाए तो जरूर उसे अपने शरीर के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ी।
0: हाँ।
1: तो प्रदूषण जो बाद धीरे धीरे माटी में अपन कैसे फैलता,
0: मट्टी में फैलने का क्रम यह है कि जैसे हम मान लीजिए रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, तो रासायनिक उर्वरकों को जो ज्यादा से ज्यादा जब डालेंगे तो जो हमारे जमीन में मित्र कीड़े हैं, जो जैसे हमने यूरिया दिया तो यूरिया में एमाइड फार्म में रहती है यूरिया, उसको कन्वर्ट करने के लिए वो हमारे मित्र कीड़े ही जो हैं, जो जीव हैं, वही बदलते हैं। धीरे धीरे वो जब कम होने लगेंगे उनको भोजन नहीं मिलेगा, उनका भोजन हमारी खाद है जो हम अपने घर में बनाते हैं, वह उनको नहीं मिलेगा तो वो मरने लगेंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी तो वह जमीन में पड़ा का पड़ा रह जाएगा, पौधों को भी नहीं मिलेगा और जमीन आपकी उसरीली बंजरीली हो जाएगी। यह है उसका एक मेन उसका टारगेट।
1: बहुत ज्यादा खर पतवार नियंत्रण का खातिर भी पंच भाई लोग परेशान रहे हैं। अब पता ही चला ला कि जहिया से खेत बने अभी तैयारी करे के बाद तब मटिये में से दवाई डालन शुरू कर देना, अब भाई बाजारे में पहुंचे ला तो कहला देखा हमारे खेत में बहुत खर जामा था, बहुत मोथा जामा था, दूबा जामा था, भाई कोनो दवाई दे दा, तो वो तो जो दुकानदार जो दहलीज तो ले आके डालन शुरू कर देना, तो वह तरह से कौन दवाई प्रयोग करें, कैसे करें कि जो इससे प्रदूषण कम फैले।
0: देखिए, रासायनिक दवाइयों को प्रयोग करने का एक क्रम है, पहले हमको जैविक तरीका या यांत्रिक तरीका होता है। यांत्रिक तरीके में हमें खरपतवार नियंत्रण यदि संभव हो तो हम अपने हाथ से कर लें, लेकिन मजदूरों की प्रॉब्लम आ रही है, लेबर की प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम रासायनिक की तरफ जाते हैं। रासायनिक दवाइयाँ या रासायनिक खाद बुरे नहीं हैं, लेकिन हम पहले अपने जैविक की तरफ ही प्रयोग करें, और जब लास्ट में मतलब नहीं कंट्रोल हो रहा है तब हम जाके रासायनिक का वो भी बिना विशेषज्ञ के सलाह के न लें। जैसे
1: सबसे जरूरी तो ये बात कि पहल का काम ही करें भाई, जुताई कोड़ाई और हाथ से निकलने की कोशिश करें, और अगर जुताई कोड़ाई हाथ से निकलने की कोशिश में ना ही सफल होता है तो जैविक विधि वाला जो प्रक्रिया वो के प्रयोग कर जा, ओकरे बाद ये जो केमिकल वाला भाई के प्रयोग कर जा सकला, तो कैसे केमिकल वाला प्रयोग कर जा जो उनसे कम से कम प्रदूषण फैले।
0: जैसे देखिए जैविक में ही है, बहुत सारे कीड़े हैं जो हमारे खरपतवारों को नियंत्रण करते हैं, हाँ, तो उसको एक बाइकोलर इंसेक्ट आता है, कीड़ा आता है जो ये आप देखते होंगे जो गाजर घास है इनको खाता है, जो आपके रोड के किनारे या खेतों में गाजर घास की बहुत समस्याएं रहती हैं, उसके लिए वो कीड़ा है वो, उसको आप छोड़ देंगे तो वो खा जाएगा पूरे उसको गाजर घास को। दूसरा चीज, हम गहरी जुताई करें गर्मी में तो उससे क्या होगा कि जो इसके बीज उज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और वो ड्राई हो जाएंगे, तो वो उससे हर चीज़ के लिए एक कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद यदि हमको सेफेस्ट दवाई का प्रयोग करना है तो आप देखिएगा कोई भी डिब्बे की लीजिए दवाई का, कोई भी कीटनाशक फफूंदी नाशक या खरपतवार नाशी लेंगे तो उस डिब्बे पर एक तिकोने आकार की संरचना बनी होगी जिसके निचले पोर्शन में लाल रंग से, पीले रंग से, नीले रंग से और हरे रंग से, इन चार रंगों से वह रंगा रहता है। तो कोशिश करें किसान भाई कि हम प्रदूषण मुक्त खेती की तरफ या हम अपनी जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें लाल निशान की दवाई का प्रयोग ना करना पड़े। लाल निशान की दवाई सबसे ज़्यादा जहरीली है और 60 दिन तक उसका असर रहता है, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन या कम अवधि के फसलें हैं उनमें वह पौधे में बनी रहेगी दवाई, और जो भी उसको खाएगा चाहे आपका जानवर खाए चाहे हम खाएं उसके माध्यम से हमारे शरीर में आए। जैसे जानवर है, दुधारू जानवर है, यदि आपने दवाई डाली है वो खाया उसके दूध के माध्यम से हमारे शरीर में आ जाती है, या सब्जी है उसमें आपने दवाई डाल के चौथे दिन दवाई खाना उसको अपने भोजन में ले लिया तो वो दवाई आपके शरीर में आती है। तो आप देखते होंगे बहुत कम उम्र में ही आपके पेट से जनित बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, उसका यही सब कारण है कि आप कहते हैं कि हम तो स्वस्थ सब चीज खा रहे हैं लेकिन जो ये दवाइयों के इफेक्ट से जो प्रिजर्व होकर के आती हैं, आप सीजन की फसलें कभी मत खाएं, जो आन सीजन की फसल है उसको फल और सब्जियों को प्रयोग करें, उनमें दवाइयाँ कम पड़ती हैं, लेकिन जो बाहर से पैक होकर के आ रही है आप सीजन की उनको कभी भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसमें हाईली पेस्टिसाइड के दम पर वह आती है। इनका आप विशेष ध्यान रखें, और जैसे लाल निशान कीटनाशक ना प्रयोग करें क्योंकि उसमें मित्र कीड़े हमारे वातावरण में उनको भी मार देता है वो। यदि आपको रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करना है या फफूंदनाशक का प्रयोग करना है तो उसमें सेफिस्ट दवाइयों में पीले निशान की रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का जो मैंने अभी बताया आपको ट्रायंगल बना होगा और नीचे पीला रंग रंगा होगा,
1: मैंने बाजारी में जाए दवाई लें देखें डिब्बा के अगर वहाँ पर पियरका वाला तिकोना निशान बना होगा तो वह दवाई के अगर ला के डालना तो उसे जो प्रदूषण नहीं,
0: हाँ प्रदूषण वो दवाई बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है तो जिससे वातावरण में 15 दिन उसका मैक्सिमम पीरियड है तो 15 दिन के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएगी वातावरण, मतलब न पौधे में रहेगी न कहीं रहेगी, तो उससे वो आपका पौधा स्वच्छ रहेगा। और एक गुजारिश और है कि अपने किचन गार्डन में मतलब अपने घर के आगे पीछे बिना दवाई के बिना उर्वरक के यदि आप सब्जी उगाइए अपने खाने के लिए करिएगा तो अपने स्वस्थ रहेंगे और उससे आप अपने श्रम से समय सुबह शाम टहल करके और उसको आप करते हैं तो वह दवाई बिना दवाई के यदि खाते हैं तो आपकी लंबी उम्र होगी इससे।
1: अच्छा एक बात है और भाई, जैसे पंच भाई लोग उत्पादन तो करे ना लेकिन उत्पादन के बाद जैसे आप बताइए कि 60 दिन में दूर हो जाए तो जो गेहूं चावल का उत्पादन बा यह में भी दवाई का प्रयोग होला, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा जो उनबा लगभग शुरू होला तब वही समय से पंच भाई लोग डालन शुरू करे ला और पता चला ला कि पकले के कुछ दिन पहले तक भी दवाई डाल के ओके सुरक्षित करने का प्रयास करे ला, तो वो आइला के बाद भी जब ओके भंडारण करे खोला तब भी दवाई डाल जाए उसे का हानि बा।
0: देखिए भंडारण में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बहुत स्पष्ट बात कि जब भी हम भंडारण कर रहे हों तो 10% से नीचे नमी होनी चाहिए। उसके लिए भाई कोई मशीन तो है नहीं किसान भाइयों के पास, वो अपने मुँह में 4 दाना डालें, यदि वो कट कट की आवाज़ करता है तो इसके मतलब वो भंडारण के लिए प्रयुक्त है, मतलब हम भंडारण कर सकते, उस यदि 10% के नीचे नमी होगी तो आपके जर्मिनेशन पर असर नहीं आएगा, और दूसरा चीज उसमें रोग नहीं लगेंगे, क्योंकि यदि नमी रहेगी और उसमें अंधेरे में तो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो सबसे मेन बात कि नमी का कंट्रोल करें, दूसरा चीज कि जो भंडारण के लिए दवाइयाँ हैं, जो रिकमेंडेड दवाइयाँ हैं, जैसे EDB एम्पुल है, उसी का प्रयोग करें, ना कि आप अनर्गल दवाइयों का प्रयोग करें। दलहनी फसल का यदि आपको भंडारण करना है तो खड़े बीज में, दलहनी फसल में बहुत बड़ी समस्या आती है, ये कीड़ा है जिसको कैलोसो ब्रुकस चाइनेंसिस कहते हैं, वह पूरी दलहन को खा जाता है भंडारण में। उसके नियंत्रण के लिए हमें स्पेशली उसको, जैसे प्रदूषण मुक्त खेती की बात हो रही, जैविक खेती की बात हो रही है, तो यदि हमको थोड़े स्तर पर करना है तो यदि हम दाल को दो भाग में बदलवा देते हैं तो उसमें कीड़ा नहीं लगता। दूसरा, यदि हमको खड़ी साबुत दाल रखनी है तो उसमें हल्का सा तेल, सरसों का तेल यदि मिक्स कर दें तो उसमें भी वो कीड़े के अटैक नहीं होता है।
1: माने दवाई के प्रयोग नहीं करेंगे,
0: दवाई का प्रयोग तरह से करेंगे, इस तरह का करेंगे। जैसे आपको चावल का यदि भंडारण करना है तो एक दवाई जैविक आती है जो आपके बाजारों में मिलेगी, वह दवाई जैविक दवाई है, और इसका यदि आप लेयर बनाते हुए आप उसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको उसमें कीड़े, जो आपको जाले वाला कीड़ा लगता है, वह नहीं लगेगा। तो ये जैविक दवाई।
1: डॉक्टर धीरेंद्र प्रताप सिंह जी, आप अपनी बैठकी में लिए इतना निम्न जानकारी पंचभाई लोगों के दहली, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया, बहुत निम्न जानकारी दी है ना डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदूषण मुक्त खेती विषय पर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी जानकारी लेते रहना, इतना निम्न जानकारी खरीद दी है, धन्यवाद। सुखर सुखर नाई गीत के माध्यम से।
3: अरे सैया जी के डेरा से कैसे जेबो ना।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। श्रोताओं, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थ नगर द्वारा हमारे केंद्र को जिन विलुप्त व्यक्तियों के संबंध में सूचना दी गई है उनके विवरण इस प्रकार हैं। धनीश यादव पुत्र रामचंद्र यादव, साकिम बसडिलिया, थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। धनीश यादव पुत्र रामचंद्र यादव की उम्र लगभग 26 वर्ष है। इनकी लंबाई लगभग 5 फुट 10 इंच है। रंग सांवला है। ये काले रंग का टी शर्ट, नीले रंग का जीन्स पहने हुए हैं। इनके संबंध में कोई भी सूचना मोबाइल नंबर 8299233364 पर दी जा सकती है। रोशनी पुत्र रामहरख, साकिम बनकटा, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। रोशनी पुत्री रामहरख प्रजापति की उम्र लगभग 24 वर्ष है। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट है। रंग गोरा है। चेहरा गोल है। ये लाल रंग की साड़ी, काले हरे रंग की ब्लाउज और पैर में हवाई चप्पल पहनी हुई हैं। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके संबंध में कोई भी सूचना मोबाइल नंबर 9511727236 पर दी जा सकती है। नयनमती पत्नी राजेश, साकिम भुजौली, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। नयनमती पत्नी राजेश की उम्र लगभग 35 वर्ष है। इनकी लंबाई लगभग 4 फीट 6 इंच है। रंग गोरा है। ये बैगनी रंग की साड़ी और काले रंग की चप्पल पहनी हुई हैं। इनके संबंध में कोई भी सूचना मोबाइल नंबर 9161692185 पर दी जा सकती है। सनी प्रसाद पुत्र बब्बन प्रसाद, ग्राम रानी ज्योत, थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। सनी प्रसाद पुत्र बब्बन प्रसाद की उम्र लगभग 22 वर्ष है। इनकी लंबाई लगभग 5 फुट 3 इंच है। चेहरा लंबा है। ये चॉकलेटी कलर का धारीदार शर्ट पहने हुए हैं। इनके संबंध में कोई भी सूचना मोबाइल नंबर 8601863108 पर दी जा सकती है। रेखा देवी पति विशेष कुमार, ग्राम छरहटा, थाना शिवनगर डिडई, जनपद सिद्धार्थनगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। रेखा देवी पत्नी विशेष कुमार की उम्र लगभग 32 वर्ष है।

0: इनकी लंबाई लगभग 5 फीट 2 इंच है, रंग गेहुआ है, ये कथई रंग की साड़ी व ब्लाउज पहनी हुई हैं। रेखा देवी पत्नी विशेष कुमार के संबंध में कोई भी सूचना मोबाइल नंबर 8874667053 पर दी जा सकती है। अब्दुल रहीम पुत्र बुद्धू, साकिब मोहल्ला, श्याम नगर, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थ नगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। अब्दुल रहीम पुत्र बुद्धू की उम्र लगभग 25 वर्ष है, इनकी लंबाई लगभग 5 फीट 5 इंच है, रंग गेहुआ है, इनके नाक पर कटे का निशान है, ये काले रंग का लोअर और टी शर्ट पहने हुए हैं। अब्दुल रहीम पुत्र बुद्धू के संबंध में कोई भी सूचना मोबाइल नंबर 9792996242 पर दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आइए सुनते हैं प्रभात कुमार मिश्र के स्वर में कुछ पारंपरिक लोकगीत।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे प्रभात कुमार मिश्रा के स्वर में कुछ पारंपरिक लोकगीत। और इसी के साथ हमारा लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश समार में आइए सुनते हैं डॉक्टर कमलेश कुमार राय से उनका भोजपुरी कविता पाठ।
1: एगो गीत देश के माटी के समर्पित बा।

आ दूसरका गीत घर परिवार में एगो मुखिया होला, ओ मुखिया का जिंदगी कैसन होले एकर सीधे सीधे चित्र हम प्रस्तुत कर रहल बानी।

0: भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश अमार में अभी आप सुन रहे थे कमलेश कुमार राय से उनका भोजपुरी कविता पाठ। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अस्तबक में आइए सुनते हैं राजस्थानी लोकगीत।
1: एगो गीत देश के माटी के समर्पित।

राजस्थानी लोकगीत के कलाकार हैं कालनाथ व साथी।

प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अस्तबक में अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत। कलाकार थे कालनाथ व साथी। और इसी के साथ हमारा प्रादेशिक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शाम 7:31 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम आज का संगीतकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे मशहूर संगीतकार नदीम श्रवण द्वारा संगीतबद्ध किए गए कुछ यादगार फिल्मी गीत।

रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बाल कृष्ण मिश्र से उनकी हिंदी वार्ता, विषय होगा हथकरघा। रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के फनकार होंगे आबदा परवीन, गुलाम अली और चंदन दास।

अभी आप सुन रहे थे हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, यह सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जनकल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित यह परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। यह उद्यम लिथियम आयन बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करता है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना है कि उनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक जटिल तकनीक विकसित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को

0: और अधिक सशक्त बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की CCTV से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि BEd प्रवेश परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी।
1: जिले में BEd प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग सभी सेंटर्स तय हो चुके हैं। उस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा के पेपर्स के संबंध में सभी चीजें लगभग तैयार कर ली गई हैं। जिले में जितने भी सेंटर्स हैं, बच्चों को वहां पे पर्याप्त सुविधा भी मिल पाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्लॉक रूम की भी व्यवस्था कर ली गई है।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय किया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
2: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
3: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
0: प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
5: मीडिया वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।
6: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुनेंगे फिल्म संगीत इस अंतराल के बाद।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
9: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
10: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
9: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
10: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
9: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
10: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
8: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
11: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
12: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
11: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
12: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
11: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
12: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
11: For details, log on to www.ddindia.com।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
2: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
1: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
2: हर गली हर मोहल्ला हो साफ। स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
1: स्वच्छता का ये संकल्प।

0: चिपलें, गंदगी को दूर भगाएं,
1: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

फिल्म संगीत के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त राजेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम आज का संगीतकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं युवा दिलों की धड़कन, मशहूर संगीतकार नदीम श्रवण द्वारा संगीतबद्ध किए गए कुछ यादगार फिल्मी गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म राज से। स्वर दिया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

अभी आप उदित नारायण और अलका याग्निक को सुन रहे थे फिल्म थी राज। और आइए सुनते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में फिल्म रंग का ये गीत। श्रोताओं, नदीम श्रवण हिंदी फिल्म संगीत की वह प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी थी जिसने 1990 के दशक में मधुर भावनात्मक और कर्णप्रिय धुनों से श्रोताओं के हृदय पर अमिट छाप छोड़ी। इस जोड़ी में नदीम अख्तर सैफी और श्रवण राठौर शामिल थे। दोनों ने मिलकर फिल्मी संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान कीं।

श्रोताओं, नदीम श्रवण के संगीत की सबसे बड़ी विशेषता सरलता, भावनात्मक गहराई और मधुरता थी। उनके धुनों में शास्त्रीय संगीत की झलक के साथ लोक संवेदना का सुंदर समन्वय मिलता है। प्रेम, विरह और मानवीय भावनाओं को उन्होंने ऐसी सहजता से स्वरबद्ध किया कि गीत सीधे दिल को छू जाते हैं।

श्रोताओं, नदीम श्रवण के गीतों की लोकप्रियता का एक कारण यह भी था कि वे अच्छे गीतकारों और गायकों के साथ काम करते थे, जिससे शब्दों और सुरों का संतुलन अत्यंत प्रभावशाली बनता था। उनके गीत आज भी मंचों, रेडियो और श्रोताओं की स्मृतियों में जीवित हैं। श्रवण राठौड़ का निधन 22 अप्रैल 2021 को हो गया, जिससे इस ऐतिहासिक जोड़ी का एक अध्याय समाप्त हो गया। फिर भी नदीम श्रवण का संगीत हिंदी सिनेमा की सुनहरी धरोहर के रूप में सदैव सदैव स्मरणीय रहेगा।

और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का हमारा ये सुहाना सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। आप अपने दोस्त राजेश पाठक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं।

0: बालकृष्ण मिश्र से उनकी हिंदी वार्ता हथकरघा।
1: पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र है। अधिकतम घनत्व वाला क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल की सीमा को छूता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही कुशीनगर पर्यटन केंद्र है, जहां पर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक महात्मा बुद्ध का दर्शन करने आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही शिक्षा का केंद्र बनारस एवं इलाहाबाद स्थित है। महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग भी बनारस, भदोही, खलीलाबाद, गोरखपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में विकसित है। अति प्राचीन काल से ही मशहूर बनारसी साड़ी पूरे देश में विख्यात है। यहाँ की कढ़ाई एवं बुनाई की प्रशंसा आदिकाल से ही चली आ रही है। समय समय पर प्रदेश सरकारें इसके विकास हेतु अनेक योजनाओं को मूर्त रूप देकर इसे पल्लवित एवं विकसित होने के लिए कारगर उपाय किए हैं। निरंतर विकास की ओर हथकरघा उद्योग विकसित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए आर्थिक पैकेज योजना के तहत 21,620 बुनकरों, 936 प्राथमिक समितियों एवं 12 एपेक्स समितियों को 65.11 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5,433 बुनकरों को क्रेडिट कार्ड जारी करते हुए 4 करोड़ रुपए का ऋण किया गया है। हथकरघा क्षेत्र पुनरुद्धार सुधार एवं पुनर्गठन योजना अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को कच्चे माल की आपूर्ति हेतु धागे की खरीद पर 10% सब्सिडी की दी जाती है, जिसके तहत अब तक 35,000 बुनकरों को पासबुक जारी की गई है। मुबारकपुर व आजमगढ़ में हथकरघा उद्योग के लिए विपणन केंद्र की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदेश में 50 क्लस्टर संचालित हैं, जिसमें लगभग 17,000 बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं। हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 17 लाख के लगभग बुनकरों को हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने के लिए व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अंतर्गत 10 लाख रुपये की परियोजनाओं पर ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 4%, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक को ब्याज रहित धनराशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। बस 2014-15 में 934 उद्यमियों को ऋण वितरण कराया गया। उद्यमियों को अपने उद्यम के मेमोरेंडम की ऑनलाइन दाखिले के लिए तथा उनकी पावती सीधे ऑनलाइन ही प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। प्रदेश में अब तक 29,146 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना कराई गई है, जिससे 1,86,277 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए तथा इन उद्यमों में 2,320 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार योजना विशिष्ट हस्तशिल्पियों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रादेशिक पुरस्कार योजना एवं श्री जनेश्वर मिश्र निर्यात पुरस्कार योजनाएं संचालित हैं। विशिष्ट हस्तशिल्पियों को दी जाने वाली पुरस्कार धनराशि 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये तथा प्रादेशिक पुरस्कार योजना की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई है। राज्य में उद्यम के माहौल को बेहतर बनाने के लिए राज्य मंडल एवं जिला स्तर पर उद्योग बंधु का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। प्रदेश के समृद्ध हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पहल करते हुए प्रथम बार उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014 जारी की गई है। प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के योगदान व महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्रय नीति 2014 लागू की गई है। सरकार के प्रयासों से जहां वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रदेश से कुल निर्यात 59,546 करोड़ था, वही वित्तीय वर्ष 2013-14 में बढ़कर 80,523 करोड़ रुपए हो गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 35,118 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना हुई है, जिससे 2,86,286 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। 289,221 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। हथकरघा उद्योग को विकसित करने के लिए सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग करना होगा। हथकरघा द्वारा निर्मित वस्त्रों को अपनाना होगा, तभी इस हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। हथकरघा उद्योग बहुत ही पुराना उद्योग है, इस उद्योग के विकास से बेरोजगारी दूर होगी, तभी महात्मा गांधी का सपना साकार होगा। महात्मा गांधी कुटीर उद्योगों के पोषक थे, उनकी मान्यता थी कि छोटे छोटे उद्योग ग्रामीण अंचल में भी लगाए जाएं, जिससे ग्रामीणों का पलायन रुक सके, हर हाथ को काम मिल सके, जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। उनकी मान्यता थी कि देश की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि सभी उद्योगों के लगभग सभी कच्चे माल ग्रामीण अंचल में ही मिलते हैं। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के पक्षधर थे। चौधरी चरण सिंह भी कहा करते थे कि देश के खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से ही होकर गुजरता है। प्रदेश सरकार ने जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में 150,000 एवं 25,000 की धनराशि हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में प्रतिमाह 328 रुपया छूट की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था की गई है। 60 वर्ष से अधिक आय के हथकरघा उद्योगों बुनकरों के लिए 500 रुपये की दर से समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना का प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति 2014 के अंतर्गत प्रदेश में लगने वाले वस्त्र उद्योग इकाइयों को 5-7% का ब्याज लाभ प्रदान करने के लिए ब्याज उत्पादन योजना लागू की गई है।
0: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बाल कृष्ण मिश्र से उनकी हिंदी वार्ता हथकरघा, और इसी के साथ हमारा हिंदी कार्यक्रम भी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुनेंगे सुगम संगीत इस अंतराल के बाद।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
5: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: रेलवे ट्रैक पर इंसानों एवं जानवरों के आने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे ट्रैक के आसपास ना खुद घूमें ना जानवरों को घूमने दें।
5: रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। रेलवे लाइन को अनाधिकृत रूप से पार न करें, ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के फनकार हैं चंदनदास और गुलाम अली। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले चंदनदास को।

श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आपकी सेवा में है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस समय आज आप सुन रहे हैं गुलाम अली और चंदन दास को।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंदनदास और गुलाम अली को। और इसी के साथ हमारा सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1,600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
4: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
5: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है। समाचार

में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण

0: इन ऑनलाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को

मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 175,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: पंद्रह अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आज़ादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आज़ादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे। और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई, वह है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
0: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाज़ें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविज़न कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज़ में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
0: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाए तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
3: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
4: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा। और अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ही इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
5: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
4: अच्छा।
5: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कॉन्टेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
4: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहाँ पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए? और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत इसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
5: हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। देखिए, हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
4: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
6: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग।
4: पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है। कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
6: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
6: लोपर गामिनी।
3: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
6: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
5: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
6: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अब इस तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि अरे यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है।
7: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
6: बहुत ही मजेदार होता है।
7: हाँ, एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
5: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है, तो हमने ये रियलाइज

0: रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स. हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है. हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है. ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं. आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो आइसक्रीम खाई थी बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए. फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है. बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं.
1: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो.
2: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है. वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए. लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती. कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो. और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की. आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं. स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में.
3: जी धन्यवाद.
2: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
3: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है. मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें. मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है.
2: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
3: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है. खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं. प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं. प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उस पर ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है.
2: जी
3: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं, तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते हैं तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती. ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है. तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो.
2: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है, तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें तो?
3: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है, आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने

0: किया हो, ज़्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे, और अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरिंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 330.093 यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा।
1: परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी, पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
2: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। Her voice has been beautifully nurtured under the guidance of legendary gurus, including Pandit Ajay Pohankar.
1: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
2: She has graced prestigious music festivals like the Tansen Samaroh and Ustad Amir Khan Samaroh. Leaving an indelible mark with her singing from the Prayag Mahakumbh to the Nehru Center in London.
1: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
2: Honored with several accolades, including the Kalashri and Mohammad Rafi Awards. Her performances are not only technically flawless, but also deeply reflect the soul of Indian classical music.
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं मान तज देहो प्यारे। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं मानो न जियरा मोरा और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
2: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग with a drut composition set to ektal with the lyrics manu nahi tumri baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।
1: कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।